दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: B101, just great music.
1: Up, Shawnee, FM 101, Abulabale, Jabba Jabba.

0: D101, just great music.
1: Aap shuniye FM 101, available in Java.

तो वो किसी नाम खुशामदीद कहते हैं वापस आपको प्रोग्राम में। वक्त हुआ जाता है 7:31। मैसेज कर सकते हैं आप 4471 पे। तरीका बहुत ही आसान है, गो टू योर राइट मैसेज ऑप्शन, टाइप 101 स्पेस योर नेम योर प्लेस नेम योर मैसेज एंड सेंड दैट 4471। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, गो टू योर कॉल लॉग, डायल करेंगे आप 0511111 एंड 101।

भी जनाब हेल्थ सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आप लोगों ने किस तरह अपना ख्याल रखना है, किस तरह अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि आप खुद भी हेल्दी रहें और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी हेल्दी जिंदगी गुजारे, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना लें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो हमारी खुराकें हैं वो उस तरह की नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, हमारे पेरेंट्स की या फिर हमारे बड़ों की जैसे हुआ करती थी वैसी नहीं रही हैं। तो हमें खुद ख्याल करना होगा कि हम क्या इनटेक कर रहे हैं, कैसे इनटेक कर रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, किस टाइम पे सो रहे हैं, किस टाइम पे उठ रहे हैं।

जनाब खुशामदीद कहते हैं वापस आपके प्रोग्राम में, और आपको अभी लेके चलेंगे हम साइंस और टेक के मैदान में क्या हो रहा है, ये आपको बताएंगे कि साइंस हमारी इस दुनिया में क्या कर रही है, कहाँ लेके जा रही है हमें और क्या करवाना चाह रही है हमसे। कभी कभी तो डर लगता है साइंस को थोड़ा सा, मतलब जब डीपली बंदा देखता है ना, कहता है कि यार मरवाएगी ये बच्ची बड़ी खतरनाक है। वेल जनाब, टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने मौसम की पेशनगोई के लिए जदीद मसनूई जहानत का एक निज़ाम मुतारिफ कराया है। गूगल डीप माइंड और गूगल रिसर्च ने वेदर नेक्स्ट 3 मुतारिफ कराया है, जिससे ये होगा कि आप मौसम की पेशनगोई जो है वो जदीद मॉडल से कर सकेंगे। गूगल ने मौसम की पेशनगोई के लिए जदीद मसनूई जहानत का एक निज़ाम मुतारिफ कराया है। गूगल डीप माइंड और गूगल रिसर्च ने वेदर नेक्स्ट 3 मुतारिफ कराया है, जिससे ये

कॉल्स होंगी, मैं होंगी और ढेर सारी बात होंगी हमारी. थोड़े थोड़े से हम मैसेजेस भी शामिल करेंगे. कामिल ने हमें मैसेज कर दिया है, बहुत शुक्रिया कामिल बताने के लिए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं. पुरानी जी द मोस्ट फेवरेट ट्रैक ऑफ माइन.

अब न्यूज के बाद इसी गाने से वापस आएंगे और फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी. मेरे रेगुलर लिसनर्स को तो मैं सुना चुकी हूँ पहले भी, अगर उनको याद हो, बट जो नए लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी स्टोरी सुनाऊंगी. स्टोरी काफी मजे की है वैसे. वेल, हैव यू गो फॉर दिस वंडरफुल नंबर.

0: B101, just great music.
1: One, one, a bully, shabba, shabba.

अच्छा, आप जिन लोगों ने भी मैसेजेस किए 4471 पे, बहुत शुक्रिया मुझे मैसेज करने के लिए. कामल पूछ रहे हैं आपकी तबीयत ख़राब है. हाँ जी, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा गला भी ख़राब है और फुलगोभी भी चल रहा है.

ओके जनाब, इतना सा हो सकता है स्लो ट्रैक, इससे ज्यादा नहीं चला सकते हम। मैंने सच बोला था कि हम पुरानी जीन्स से शुरू करेंगे, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि हमने पुरानी जीन्स से वापस आना था। हम नहीं आए पुरानी जीन्स से वापस। जनाब इस गाने से बहुत लोगों की जवानियां और बहुत लोगों के बचपन जुड़े हैं। जब नए नए ये वाले मतलब गाने आए थे, ये मूवी आई थी खासकर, उन दिनों में मेरा कॉलेज चल रहा था और क्या धमाकेदार लाइफ चल रही थी। We were the girls जिन्होंने पूरे कॉलेज के डिसिप्लिन को मैनेज करना था। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स कुछ अलाउ नहीं होता था और हम लोगों ने टेक केयर करना होता था किसी स्टूडेंट के पास फोन ना हो, किसी स्टूडेंट के पास लैपटॉप ना हो, और मेरे पूरे ग्रुप के पास लैपटॉप और फोन्स होते थे। और हमने क्या किया, हम केमिस्ट्री लैब में बैठे पुरानी जीन्स मूवी देख रहे थे। लैब अटेंडेंट को नॉर्मली हम लोगों ने खड़ा किया होता था कि भाई अगर किसी का विजिट आ जाए, प्रिंसिपल का विजिट हो जाए, कुछ हो जाए, यू हैव टू कम एंड टेल कि भाई विजिट हो गया है, अब आप संभाल लो। हम अपने लैपटॉप्स छुपा देते थे। फिर पूरे कॉलेज को हमने आगे लगा रखा होता था कि भाई आप लोगों ने फोन नहीं रखने, लैपटॉप्स नहीं रखने, ये नहीं करना। स्ट्रिक्ट एक्शन चल रहे हैं और खुद के पास सब चल रहा है। पुरानी जीन्स मूवी देखी जा रही है, प्रिंसिपल का विजिट हो गया, लैब अटेंडेंट को पता नहीं चला, प्रिंसिपल केमिस्ट्री लैब में आके सामने खड़ी है और हम मूवी देख रहे हैं पूरे का पूरा ग्रुप। प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, खैर उन्होंने इतना बोला कि अपनी सैशेस उतार दो, बैजेस दे दो वापस। दे दिए जनाब, ले गई वो अपने ऑफिस, लैपटॉप भी पकड़ लिए, कल अम्मा अब्बा के साथ आना।

लेकिन खैर हम भी ठीक ठहरे, पापा को डांटने का मौका कहाँ देंगे। चले गए प्रिंसिपल के ऑफिस, बता दिया भाई कि बस सब हो गया जो हो गया, सॉरी कर लिया, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं ये तो होने वाला नहीं है। और उससे हुआ ये कि वो जो रेवोल्यूशन के लिए गए थे, बाकी सब तो बच गए, मैं फिर रगड़ी गई। तुम सबको लीड कर रही हो ना, बाकी सबके बैचेस वापस मिल गए, सब हो गया, ना मेरा लैपटॉप ना मेरा कोई कसूर, मैं तो भाई अपनी क्लास छोड़ के ऊपर अभी गई थी पानी पीने और मैं रगड़ी गई। लेकिन दोस्त तो दोस्त हैं यार, उनको छोड़ कैसे सकते हैं फिर। मैंने कहा सही है, हम एक मरते हैं बाकी छूटते हैं, तो ठीक है मानते हैं फिर। पैसे उधार वाला तो कोई काम नहीं था, हमने कह दिया भाई फीस भरी है मैडम, ऐसा नहीं होगा, ना अम्मा आएंगी ना अब्बा आएंगे, हम भी क्लास में बैठेंगे, क्लास से नहीं उठा सकती, आपने बैच लेना आप ले लें। बस जनाब फिर यादें बन गई, अच्छी खासी बन गई उस प्रिंसिपल के साथ। लेकिन वो इंसिडेंट आज भी पूरा ग्रुप नहीं भूलता, और फिर वो हफ्ता जैसे मेरा गुजरा था वो तो पूरे ग्रुप को कभी नहीं भूलता। इतनी बेशरम थी सारी, इतनी बेशरम थी कि हंस के निकलती थी, फिर पता भी था कि हमारी वजह से ये फंसी है, फिर भी हंसती थी।

जनाब हैव गॉट दिस वंडरफुल नंबर आई ट्रस्ट दिस ट्रैक बिकॉज ये तीनों ट्रैक मैंने सुने हैं तो मुझे थोड़ा सा है कि आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा सुन के लग रहा है कि अच्छा नहीं गुजरेगा

from physics, then tech, and then business.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 F.

जिदे हौसले बुलंद होन ओ कदी थक के नहीं बहंदा, ते जिदे हड्डा च मेहनत रची होवे ओ मंजिल ते पहुंच के रहंदा, ओ मंजिल ते पहुंच के रहंदा।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: Coming up next, 101 News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वलीअहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। लबनान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए दो रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मैरी टाइम असलाहत के लिए कायम वज़ीर-ए-आज़म के टास्क फोर्स के तहत पोर्ट कासिम की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आई है। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिले मस्तूम में फितर हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

दिल मुब्तला है कब से अजाबे सुकूत में, तू रब्बे नुतको लब है मुझे बोलना सिखा। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम लाहौर। वेलकम, खुश आमदीद जी आनो आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन एयर स्टूडियोज में। जी हाँ जनाब, एवरी मंडे हम और आप होते हैं साथ साथ आपके अपने फेवरेट लेडीज लाउंज में। मुझे कहते हैं सादिया रफीक, आपको क्या कहते हैं? वल जनाब, अपने उसी खूबसूरत से साथ को निभाने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं हम आपके साथ। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते गाते मुस्कुराते हमारे साथ साथ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और रही FM 101 के साथ साथ। हमेशा की तरह ढेर सारी चिटचैट, ढेर सारी बातें, ढेर सारा म्यूजिक लेकर आप मौजूद। और जनाब, आपकी शमूलियत, आपका साथ दरकार है। तो जनाब, बढ़ते हैं आज के वेदर अपडेट की जानिब। लेट्स सी क्या चल रहा है। Well, as per recorded at 11 a.m., it's 33 degrees Celsius on the scale. Maximum temperature aaj ke din 36 degrees, jabke kam se kam temperature 26 degrees rehne ki umeed ki ja rahi hai. Humidity level hai 56% aur hawa chal rahi hai 6 km fi ghanta ki raftaar se. Partly sunny, पार्टली क्लाउडी, लेकिन जनाब टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा है। एक मजे की बात यह है कि थोड़ी थोड़ी फील आ रही है। रात को ही सही, किसी वक्त ही सही, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मौसम जो है वो चेंज हो गया काफी। सो वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि कब मौसम चेंज हो जाए, और इतना चेंज हो जाए कि हम बिल आखिर सांस लें, खुल के सांस लें, गर्मी से बच के, गर्मी से निकल के सांस लें। एनी जनाब, ये सब चलता रहेगा और मौसम की खूबसूरती यही है कि ये बदल जाता है, एक सा नहीं रहता। बिल्कुल वक्त की तरह से, जैसे वक्त भी एक सा नहीं रहता। सो यही खूबसूरती भी होती है और यही थोड़ी थोड़ी बुरी बात भी होती है। ले जनाब, पढ़ रहे हैं प्रोग्राम के आगाज के जाने, और अब भी ट्रैक से आगाज करें।

तो जनाब रिकॉर्ड व्यूज के साथ ये ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ चुका है यूट्यूब के। 1 अरब से ज्यादा लोग दुनिया भर में इस ट्रैक को एंजॉय कर चुके हैं।

0: All right, listeners, we're back again. Ladies Lounge Sadia Rafiq ke saath aap sun rahe hain 1 baje tak hamara aur aapka saath hai. हमारे वो दोस्त, वो लिसनर्स जो इस वक्त सफ़र में हैं, रिश्ते में हैं, आप मूव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, आपसे कहेंगे जनाब हैव सेफ वे एंड प्लीज बी वेयर ऑफ यंग ड्राइवर्स, अनएक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स, इमेच्योर ड्राइवर्स, क्योंकि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स आजकल रोड्स पे आ चुके हैं जो कि फुली ट्रेंड नहीं हैं इस काम के लिए. स्पेशली बाइकर्स, वो भी कि जो ट्रेंड हैं उनको भी बहुत ध्यान से ड्राइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि गलती आपकी नहीं होती, आप ठीक जा रहे होते हैं. लेकिन कोई आता है अचानक से जो ठीक नहीं जा रहा होता. So I always feel sorry for all the bikers के उनकी बचत नहीं हो पाती. So बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से, and to all those parents के जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों के, अंडर एज बच्चों के हाथ में बाइक्स दी हुई हैं, please don't do this. आप अपने बच्चों के साथ साथ और लोगों की जिंदगियां जो हैं खतरे में डाल रहे हैं. थोड़ा सा सेंसिबल, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है हमें इस जिम में, ताकि जो हमारे रोड्स हैं हम उनको सेफ बना सकें ट्रैफिक के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्हें उस रोड से गुजरना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है. So, now this is a message for you all. Keep dialing 0422111001. आप लोगों की ऑफर कॉल्स शामिल करेंगे शो में थोड़ी सी देर में. फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें, facebook.com/fm101lahore हमारा फेसबुक पेज एड्रेस है, जहां पे आपको हमारा स्टेटस अपडेट मिलेगा आज के शो के हवाले से. लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करेंगे शो में. और जनाब इसके अलावा 4471 इज देयर, जहां पे आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस हमें फॉरवर्ड करते हैं. अपने फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए 101, स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और भेज दें उसको 4471 पर. Well, जनाब हाय दिल बेचारा,
1: सिंगल गवारा, दिल मेरा
0: फ्रॉम परेहट लव,
1: तेरे जाए से क्यों उड़ा के
0: आशिक. लेट्स एंजॉय, स्टिक अराउंड, दिस इज FM 101.

All right, listeners, sorry, we're back once again. It's 11:24 on the dial right now. You're listening to Ladies Lounge. मुझे कहते हैं सातिया रफीक. आपको क्या कहते हैं? आप हमें बता रहे हैं 0422111001 पे आप लोगों की कॉल्स हम तक पहुंच रही हैं. अभी ऑफर कुछ लोगों से बात हुई. तो जनाब बारी है आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक बहुत ही डिबेटेबल. आज का टॉपिक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. वैसे कहना नहीं चाहिए, कोई पता नहीं होता आगे चल के क्या बने, लेकिन आई सीरियसली वांट टू टॉक अबाउट इट. ऐसे ही मेरे जहन में आया, बैठे बिठाए ख्याल आया कि हर तरह जेंडर्स जो हैं उनके रोल्स शहर में और हो जाते हैं, गाँव में और होते हैं. ख्वातीनों या मर्दों, दोनों की ज़िंदगी आप देखिएगा कि गांव में और तरह की होती है, शहर में और तरह की हो जाती है. मतलब आप डेमोग्राफिक्स के हवाले से बात करें, उनकी एजुकेशन के हवाले से, करियर्स के हवाले से बात करें, उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें, हर तरह से लाइफ डिफरेंट होती है. तो चूंकि हम लेडीज़ लाउंज में बैठे हैं तो लेडीज़ की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, घर वालों की बात करते हैं. तो मैंने सोचा आज हम आपसे पूछते हैं, आपसे जानते हैं आप क्या फ़ील करते हैं कि एक शहर की खातून और एक गांव की खातून, किसकी ज़िंदगी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, किसकी ज़िंदगी में ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ होते हैं. तो जनाब आपने सोचना है, गौर करना है, बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र करना है, फिर मुझे बताना है. क्योंकि अपनी अपनी जगह पे दोनों लाइफस्टाइल्स में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम भी करना पड़ता है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैठे बिठाए मिल रही होती हैं दोनों सेटअप्स में. सो कंपेयर कीजिए आप भी अपने जहन में, ख्याल में, तसव्वुर में. अगर आपने दोनों लाइफ्स को एक्सपीरियंस किया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए. उस फर्क को निकालना आसान हो जाएगा. तो जनाब सोचिए और हमें बताइए. डायल कीजिए 0422111001. फेसबुक पेज पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/fm101lahore. ले जनाब नेक्स्ट ट्रैक प्ले कर रहे हैं.

All right, listeners, we're back. और कुछ कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे, ऑफ एयर से बातचीत हुई. बहुत अच्छा लगा जनाब, बहुत अच्छा लगता है हमेशा से आप लोगों से बात करके. लियाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑल द वे फ्रॉम मांगा मंडी हमें सुन रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं आपको सुनता हूँ, सो आज सोचा कि आपके शो में शामिल हुआ जाए. हमें बहुत अच्छा लगा जनाब आपने ऐसा सोचा. बहुत सारी दुआएं उन्होंने दी, बहुत शुक्रिया जनाब. और जनाब इसके अलावा लियाकत साहब, एक और लियाकत साहब हमें सुन रहे हैं समनाबाद से, आपका भी बहुत शुक्रिया. आप भी शो में शामिल हुए जनाब अपनी कॉल के थ्रू. और उन्होंने कहा कि मैंने आपका लास्ट शो भी सुना था और आज भी मैं आपका शो सुन रहा हूँ, सो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ मैं आपको सुन रहा हूँ. लें जनाब, ये आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बता दिया आपने. मुझे पता होना चाहिए ना कहाँ कहाँ पे कौन कौन मुझे सुन रहा है. यहाँ पे बैठ के, स्टूडियोज में बैठ के, ये जो एक एहसास है ना कि हमें कहाँ कहाँ बैठे लोग सुन रहे हैं, ये जब हम तक पहुँचती है बात, तो इसकी एक और ही नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट होती है सीरियसली. और जनाब इसके अलावा शमीम आप ही हमारे साथ थी और आज उन्होंने मुझे कहा कि सब मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत हंसती हूँ, लेकिन आप तो मेरे से भी ज़्यादा हंसती हैं. सो जनाब थैंक यू सो मच. हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए, और हंसने की खूबसूरती यही है कि आप जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपके आसपास के लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, माहौल अच्छा हो जाता है. और आज के दौर में ये हो जाए तो और चाहिए ही क्या. हर इंसान इतना संजीदा है, हर इंसान इतना सीरियस है. वो जो उदास नस्लें जिनका जिक्र होता था ना, वो लगता है कि वही सारी की सारी इस दौर में आ गई है. हर वक्त की टेंशन, बिला वजह का डिप्रेशन, बिला वजह की एंजाइटी, हर वक्त गैजेट्स में घुसे रहना, ये सारी चीजें जो है इन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया. अब हंसना मुस्कुराना भी ऐसे लगता है कि जनाब अपॉइंटमेंट के साथ होता है. सजना फरी को, हनीफ भाई को, तारिक साहब को और अमारा को, साजदा को, सबको सलाम कहा है शमीमा पी ने. और एक अदद सॉन्ग की फरमाइश भी की है. मैं जनाब वो सॉन्ग ढूंढ रही हूँ, सर्च कर रही हूँ, जैसे मुझे मिलता है हम ज़रूर प्ले करते हैं. और आज मैंने आपसे बोला है आज के टॉपिक के हवाले से ये जनाब कि आपको क्या लगता है गांव की ख़वातीन या शहर की ख़वातीन, किनकी ज़िंदगी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, ज़्यादा मुश्किल होती है. आप हमें बता रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि सोच समझ के आपने बताना है. दोनों लाइफ के अपने प्रॉस कॉन्स हैं, अपने सेटअप्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं. लाइक गाँव में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज ऑलमोस्ट एज कम्पेयर टू सिटीज बात करें तो गायब होती हैं, उस तरह से नहीं दिखती. लाइक बेसिक फैसिलिटीज एजुकेशन की उस तरह से इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलते हमें जैसे शहरों में होते हैं डेवलप्ड. और भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे अपने शो में. आप लोग भी हमारे साथ साथ रहिए और हमें बताते रहिए आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है. लें जनाब एक और अपबीट ट्रैक आप सबकी समातों की नज़र, आप सबका मूड अच्छा करने के लिए. दिस इज नदीम अब्बास लूने.

एक बहुत मज़े की बात है जिसपे हम में से बहुत कम लोग जो है वो गौर करते हैं। ख्वातीन जो शहर की हैं वो पढ़ी लिखी हैं, डेफिनेटली उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और फिर उस बेस पे वो अच्छी अच्छी जगहों पे ऑफिसेज में अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम भी कर रही हैं। और आई सीरियसली एडमायर टू ऑल दोज वुमेन की जो दिन भर अपने प्रोफेशन को देती हैं और उसके बाद अपनी फैमिली को, अपने घर को भी टाइम देती हैं। लेकिन जो चीज़ हम लोग अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं वो ये है कि गांव की जो ख़वातीन हैं, जो देहात की ख़वातीन हैं, वो भी फुल्ली इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। हमें खेतों में काम करती हुई नज़र आती हैं, वो घरों के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमें करती हुई नज़र आती हैं, दस्तकारी करती हुई नज़र आती हैं और इस तरह के दीगर हुनर कि जहाँ वो घर बैठे काम कर रही होती हैं, अर्न कर रही होती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हैं, लेकिन जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कोई सीरियस ही नहीं लेता। आई मीन क्यों? सीरियसली, जो ख़वातीन स्पेशली फील्ड्स में काम कर रही होती हैं, मर्दों के साथ काम कर रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, लगा भी रही हैं फसलें, काट भी रही हैं, देखभाल भी कर रही हैं, I've seen some now, आजकल तो ऐसी ख़वातीन भी आ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू देखने में जो बाकायदा ट्रैक्टर चला रही हैं, तो उनको हमने कब क्रेडिट देना जनाब? हाँ ठीक है, उनकी अलग से सैलरी नहीं आती। वो अलग से डिमांड भी नहीं करती होंगी शायद, लेकिन वो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा हैं और वो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको वर्किंग लेडीज़ मानना चाहिए। ले जनाब, इस तरह की और बहुत सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं टिल वन, इट्स 11:45 ऑन द डायल राइट नाउ और आप लोगों का हमारा साथ है ठीक 1 बजे तक। 12 बजे के बाद आप लोगों की लाइव कॉल्स हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे शो में। 1111 इज़ द नंबर, फ़ोन से डायल करें, मिलाएं 042-111-0101। FM 101 लाहौर, रेडियो पाकिस्तान से आप सुन रहे हैं लेडीज लाउंज, मेरे यानी के सातिया रफीक के साथ। आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि गांव की ख़वातीन या शहर की ख़वातीन किसकी ज़िंदगी है कितनी टफ, कितनी चैलेंजिंग? ले जनाब, अब राहुल की आवाज़ शामिल करने जा रहे हैं शो में।

All right, listeners, it's 11:51 on the dial right now. थोड़ी ही देर में हमने बढ़ना है न्यूज ब्रेक की जानिब, और उससे पहले हो रही है आप लोगों से बातचीत. उस्मान मुगल साहब ने सलाम बोला था जनाब एहसन साहब को, साजिदा साहिबा को, इमरान शाह साहब को, आरजे डॉक्स को, मैडम नगमाना को, मैडम खदीजा को. तो जनाब सबको आपका खुसूसी सलाम ने पहुंचा दिया. एक दफ़ा तो मैं भूल गई, लेकिन जनाब आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सलाम मेरी अम्मी कहती हैं कि ये ना अमानत होती है, पहुँचाना होता है. तो जनाब ने अमानत पहुँचा दी. एहसन खान हमारे साथ मौजूद थे और ऐसा ने कहा कि दोनों ज़िंदगियां बहुत करीब से देखी हैं, दोनों ज़िंदगियां गुजारी भी हैं, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन गांव में थोड़ा सा बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर थोड़ी से प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ के मसले उससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में जब आपको हेल्प चाहिए होती है तो फिर बहुत दूर पड़ती हैं सेहत की सहूलियात हमें, स्पेशली खवातीन की सेहत के हवाले से बात करें तो. वेल जनाब ये सब है, और जो पुरासाइश जिंदगी है शहरों की, उसके अपने मसाइल हैं, उसके अपने डिप्रेशंस हैं, उसकी अपनी एंजाइटीज हैं, उसके अपने इतने सारे चैलेंजेस हैं. ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस पे चलती है, भागती है, और उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है. सो दिस इज़ व्हाट वी डू ऑल द टाइम. उसकी अपनी एंजाइटीज़ हैं, उसके अपने इतने सारे चैलेंजेस हैं. ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस पे चलती है, भागती है, और उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है.

So here we go. facebook.com/fm101 Lahore is our Facebook page, official Facebook page, जिस पे आप हमें join कर सकते हैं, हमारे show का status update आपको मिलेगा, like कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, share कर सकते हैं, आप लोगों के messages शामिल करते हैं show में थोड़ी देर में।

ऑलराइट, अकबर खान हमारे साथ कराची से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब. मुनव्वर अब्बास हमारे साथ है लाहौर से, कह रहे हैं गुड शो, थैंक यू सो मच. नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं जनाब. सोहबतपुर बलूचिस्तान से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका. और मोहम्मद नईम टेलर हमारे साथ हैं. जाहिद खान हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वेलकम टू द शो कहते हैं, थैंक यू सो मच. साइम तबस्सुम हमारे साथ है. और फिरोज आलम जान हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम मदीना मुनव्वरा जनाब सऊदी अरेबिया से हमें सुन रहे हैं. शो इज ऑलवेज गुड कहते हैं, थैंक यू सो मच. और जनाब कह रहे हैं कि हम सब मिलकर शो सुन रहे हैं, फिरोज, शाहिद, नदीम, अली, अकमल, शफकत और सुलेमान. बहुत शुक्रिया जनाब आप सबका, आप सब हमारे साथ साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं ठीक एक बजे तक. लेडीज लाउंज में मुझे कहते हैं सादिया रफीक. डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टिक अराउंड, दिस इज FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर. लौट कर आएंगे न्यूज ब्रेक के बाद.

0: ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वलीअहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। लबनान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए दो रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला मस्तूम में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने हजारों कश्मीरी सियासी कैदियों की जानों के तहफ्फुज़ के लिए फौरी बैनुल अक़वामी मुदाखलत का मुतालबा किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

Well, listeners, 12 बज के हो चुके 3 मिनट लौट कर आज के आपके साथ एक बार फिर सैफ 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन एयर स्टूडियोज में प्रोग्राम सुन रहे हैं आप लेडीज लाउंज और मुझे कहते हैं सादिया रफीक। आप भी हमारे साथ साथ हैं और जना फोन की ब्लिंक होती हुई लाइट हमें बता रही है। वेल, कुछ मजीद सॉन्ग्स हम लाइन अप कर रहे थे आप लोगों के लिए और कुछ और मिक्स सम म्यूजिक अगले घंटे के लिए हमने लाइन अप किया है। होप आप लोग एंजॉय करेंगे। सो जनाब, हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं आज के इस शो में खवातीन के हवाले से। सो थोड़ी सी बात करते हैं शहर की खवातीन के हवाले से, हाउ दे आर डिफरेंट और उन लोगों की जो लाइफ है, जो उनका लाइफ सर्कल है, वो किस तरह से चल रहा होता है। सो नो डाउट डोर स्टेप पे हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जिनके हवाले से सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है एक रूरल बैकग्राउंड में। लेकिन इसके बावजूद मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अनप्रिविलेज्ड क्लास की बात करें तो वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं। सो एजुकेशन तो होती है लेकिन उस तरह से रिसोर्सेज नहीं होते और रिसोर्सेज मिल जाएँ, एजुकेशन मिल जाए, फिर उसके बाद एक और तरह की जंग होती है घर से निकलने के लिए, परमिशन लेने के लिए कि जनाब वी हैव टू डू दिस, हमने डिग्री ले ली है, नाउ वी हैव टू प्रूव इट, हमने कुछ हेल्दी पार्टिसिपेशन भी करनी है, सोसाइटी का हिस्सा बनना है, सोसाइटी को पे बैक करना है। और ये चीज़ें बहुत कम लोग समझते हैं। आज के दौर में भी बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, यंग गर्ल्स हैं, ख्वातीन हैं कि जिन्होंने बहुत तन मन धन से पढ़ाई की और उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली बीइंग अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, आई मस्ट से कि एक जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो आप खुद तो जो पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो आपको फुली सपोर्ट कर रही होती है, गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा सब्सिडीज़ होती हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, हम वो रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब हम डिग्री ले लेते हैं, हम जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उन डिग्रीज़ को संभाल के दराज में रख देते हैं और ज़िंदगी की और एक्टिविटीज़ में जो है वो मशगूल हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हमारा सेटअप, हमारा सोशल सेटअप ऐसा सा है कि हमारा फोकस शादी के ऊपर होता है, घर के ऊपर होता है, फैमिली के ऊपर होता है। हम उन चीज़ों को, उनकी अहमियत को उस तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं और बहुत सारी ख़वातीन जंग लड़ती रह जाती हैं कि जनाब हमने पढ़ा है, हमने कुछ सीखा है, हमने उसमें एक्सेल करना है, हमने उसको ट्राई करना है, एक्सपीरियंस करना है, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि एक तो लाइफ बहुत बिजी है, शहरों के अंदर इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो घर से निकलें और जो है वो घर के सेटअप से निकल के, फैमिली के लुक आफ्टर से निकल के खेलें, इंजॉय करें, या यूँ कह लें कि स्ट्रगल करके खुद को मनवाएं, कहीं पहुँचें। सो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं शहरों के अंदर भी। फिर जो ख्वातीन काम कर रही होती हैं उनके लिए बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, स्पेशली अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, घर में कोई इस तरह से अवेलेबल नहीं होता जो पिक एंड ड्रॉप दे सके। इसीलिए आजकल जब मैं स्पेशली ख्वातीन को स्कूटीज चलाते हुए, बाइक चलाते हुए देखती हूँ, आई फील सीरियसली वेरी हैप्पी फॉर देम कि वो इंडिपेंडेंट होना सीख रही हैं। अब ये कल्चर चल निकला है तो हो सकता है अगली जो जनरेशन है उसके लिए और भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएँ, वरना मतलब आप एक डिपेंडेंट बन के रह जाते हैं और आप मोहताज होते हैं कि कोई आए हमें ले जाए, हमें ड्रॉप कर दे, हमें पिक कर ले। इस चक्कर में आप दूसरे की लाइफ भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और आपकी खुद की लाइफ जो है वो भी सफ़र कर रही होती है। सो आई सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर कि जो बच्चियों ने एक स्टेप लेकर खुद को
इंडिपेंडेंट बना कर जो है वो रोड्स पे मूव करना शुरू किया, ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। एंड आई मस्ट से कि आप लोग भी इसको प्रमोट कीजिए, और स्पेशली ख्वातीन को जब वो रोड पे आप उनको देखें जाते हुए तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ रास्ता भी दें और प्राउड भी फील करें, उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखें, उनको हेल्प आउट भी करें जहाँ पे पॉसिबल हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जितना हम ख्वातीन को एम्पावर करते हैं उतना ही हम खुद भी फ्री हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये चीज़ें जो है हमारे मुल्क के लिए, हमारी तरक्की के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो कितनी ऐसी ख़वातीन जो स्कूल कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अपने प्रोफेशनल करियर के लिए, अपने ऑफिसेज में पहुंचने के लिए पहले सिर्फ सोचती थी कि हम कैसे जाएंगे, अब वो आराम से अपनी बाइक स्टार्ट करती हैं और पहुंच जाती हैं, क्योंकि गाड़ी हर एक की पहुंच में नहीं है, हर बंदा नहीं अफोर्ड करता। सो इस कल्चर की बहुत ज़रूरत थी हमारी सोसाइटी में, एंड आई सीरियसली अप्रिशिएट इट। आपको क्या लगता है जनाब के आपकी ज़िंदगी में जो ख्वातीन हैं, आपके आसपास की ख्वातीन हैं, आप शहर में हैं या गांव में हैं, शहर की ख्वातीन की ज़िंदगी ज़्यादा चैलेंजिंग है या गांव की ख्वातीन की? ले जनाब एक और अब भी ट्रैक, असरार शाह, And beautiful verses by none other than Afzal Sahir.

0: लीजिए जनाब 04221100101 इस नंबर जहां पे आप और हम आवाज हैं, आप लोगों से बातचीत हो रही है जनाब आज के टॉपिक को लेकर। आपको क्या लगता है कि ख्वातीन की लाइफ गांव में ज्यादा टफ है या शहरों में? वैसे तो हम सबकी लाइफ बहुत टफ है हर जगह लेकिन पर्टिकुलरली आज हम ख्वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं और उनकी फैसिलिटीज के हवाले से जो उनको मुयस्सर है, किस तरह से दे आर फैसिलिटेटेड, किस तरह से दे सफर, दोनों बातें हो रही हैं। आप लोगों की भरपूर पार्टिसिपेशन शो में, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। 12:28, 1 बजे तक हमारा आपका साथ, आप लोगों की लाइव कॉल्स हम शो में शामिल कर रहे हैं 04221100101 पर। अस्सलाम वालेकुम
1: जी, अभी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम, अभी मजा ही कॉल लगी है, शुक्र है कॉल मिल गई है। अब्दुल हमीद फरुखाबाद पिंड हरजान दोबर से आ रहा
0: जी, कैसे हैं? खैरियत से?
1: अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत सारियां दुआएं ताडे वास्ते जिन्ने भी साडे सुन रहे हैं। माशाल्लाह जो कॉल आंदी आंदी भाई दी कॉल सुनी बड़ा दिल नु ना खुश हो जाएगा। सोनिया सोनी माशाल्लाह ने गल्ला कीतियां
0: बिल्कुल सही।
1: बाकी मैं जरा ना कम पे लगा ते मैं अगर मेरी कॉल मिल जाए ना हाजिर लग जाए बस
0: जी। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
1: जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सारियां दुआएं ते रब रख,
0: अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम,
2: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ, से कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ बिल्कुल, खैरियत से। बिस्मा आप कैसी हैं? आपकी आवाज़ कम कम आ रही है।
2: मैं आहिस्ता बोल रही हूँ, वजह से?
0: आप आहिस्ता बोल रही हैं या आप स्पीकर पे बात कर रही हैं?
2: स्पीकर पे?
0: फोन का स्पीकर ऑन करके बात हो रही है?
2: नहीं।
0: अच्छा,
2: अब ठीक आ रही है आवाज़?
0: जी ठीक है, ठीक आवाज ठीक आ रही है, बोलिए।
2: जी लास्ट शो मैंने आपका सुना था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार किया था आपने, प्लांट्स की बातें कर रही थी।
0: जी जी बिल्कुल।
2: तो आज तो आप वुमेन्स की बातें कर रही हैं, मींस के जैसे कि मतलब क्वेश्चन क्या है आपका इससे?
0: आपको क्या लगता है कि खवातीन की लाइफ ज्यादा चैलेंजिंग गाँव में होती है या शहर में?
2: मेरे ख्याल में तो खवातीन तो मेरे ख्याल से चांद पर भी चले जाए तो उधर भी ज्यादा खवातीन की होगी, वो गांव में भी होती है और शहर में भी होती है, दोनों साइड से होती है, वहां पे भी मेहनत करनी पड़ती है उनको काफी ज्यादा और शहर में भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर वो मैरिड है तब भी उसकी लाइफ बहुत ऐसी है, हार्ड वर्किंग होती है, जैसे हम स्टडी करते हैं, हमें जाना है घर से, रोज निकलना है, फिर आना है ट्रैवलिंग करके, और अगर मैरिड हो जाती है तो फिर तो क्या ही मैं बताऊँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तब और ज़्यादा उसकी चैलेंजेस हो जाते हैं उसके, मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। तो खवातीन की लाइफ तो मेरे ख्याल में हर एज में, हर
0: दौर में,
2: देश में, हर जगह खवातीन की लाइफ
0: ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट,
2: चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर चली जाए, मेहनत ही करनी पड़ती है और फिर बातें भी सुननी पड़ती है मेहनत करने के
0: बावजूद।
2: हाँ जी, यानी कि काम किया, कुकिंग की, उसके बाद भी अब देखिए नमक मिर्च थोड़ी ज्यादा डली जाती है, ठीक है, मेहनत तो हमने उतनी की है ना, तो उतनी मेहनत करके वो हांडी तैयार होती है, बट फिर उन्होंने आराम से खाना है और आराम से कमेंट पास कर देना। अब हमें पता है कितनी दफा हमारे हाथ जलते हैं कुकिंग करते वक्त, ठीक है, और ये उन मर्दों को भी पता होगा जो कि नान वगैरह बनाते हैं, जो होटल में काम करते हैं,
0: जो चूल्हे के आगे खड़े होते हैं,
2: हाँ उनसे पूछे ना जाके, तो क्या मतलब अगर कोई मेडिकल की फील्ड में है, कोई क्लिनिक जाती हो तो तब इतनी मुश्किल आती है उसके सामने।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा बिस्मा, बिस्मा सबसे ज्यादा कौन नुक्स निकालता है आपके खाने में?
2: सबसे ज्यादा भाई
0: मैं एक्सपेक्ट कर रही थी
2: पापा को, हाँ पापा को आदत हो गई ना मम्मा की वजह से कि वो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, पता है जैसा भी है चुप करके खाना है, बोलना नहीं है, ठीक है, तो पापा को तो अब ट्रेनिंग हो चुकी है बट अब भाई है ना वो बातें कर रहे होते, वो आराम से कुछ ना हो ना आराम से कहते थे नहीं ये सही, और सही खाना भी रखो ना अपनी तरफ से हम सही बना के रखते हैं, उसमें भी कोई ना कोई चीज ऐसी निकालेंगे कि हम हैरान हो जाएंगे यार इसको ये चीज से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैं कहती तुम लोग इसी काबिल हो बाहर से खाओ तीन टाइम रोटी ना, वो तुम
3: वो
2: इसीलिए सही रहोगे तुम, नान ही खाओ रोटियां ही खाओ तंदूर की, तुम लोग इसी लाइफ हो, मैं नहीं बना सकती।
3: बिल्कुल सही हो गया बिस्मा, बहुत शुक्रिया, रियल लाइफ इश्यूज के साथ आप आती हैं हमेशा, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके।
2: थैंक यू,
3: अल्लाह हाफिज। ले जनाब देखें कितनी मुश्किल होती है ख्वातीन की जिंदगी, आज हमने साबित कर दिया है। सो आपको खड़ा होना पड़े ना चूल्हे के आगे, सारी बातें खत्म हो जाए आपकी, आपको क्या पता खाना बना बना के अपनी बस हो जाती है कि उसके बाद खाने को दिल नहीं कर रहा होता। सल्यूट टू ऑल द वेमेन की जो कुक करती है फॉर होल फैमिली, और सिर्फ ख्वातीन ही नहीं बहुत सारे मर्द भी कर रहे होते हैं घरों में, आई नो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीखा भी हुआ है और जो हेल्प आउट भी करते हैं सपोर्ट भी करते हैं घर को। सो जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस किया ना कि खाना बनाते हम उसकी जो अरोमा है जो फ्रेग्रेंस है जो हम इनहेल कर रहे होते हैं वो उसी से हम इतना भर जाते हैं कि उसके बाद खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। सो जो लोग भी खाना खाते हैं मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ खाना खाते हुए मत बुराइयाँ किया करें। जिसने इतनी गर्मी में खाना बनाया होता है उसका रिगार्ड किया करें। And I seriously admire those people के जो चुपचाप खाना खा लेते हैं, शिकायत नहीं करते, नुक्स नहीं निकालते। हाँ जी ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। एमजाज अली हमारे साथ, हमें फेसबुक पर ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं रजा चौधरी को, एहसन खान को और दोस्तों को, सज्जाद अली राडला को, ले जनाब शर्कपुर शरीफ से हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका, कंवल नाज हमें सुन रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया कंवल आप भी हमारे साथ साथ हैं और आपने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। रमज़ान गुज्जर साहब हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं शो में, मुनव्वर अब्बास हमें सुन रहे हैं और जनाब बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ साथ। ले जनाब नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, शमीम आपी की फरमाइश पे इचरा लाहौर से हमें सुनती हैं, ना सिर्फ सुनती हैं शो में शामिल होती हैं और हमेशा एक अच्छी सी रिक्वेस्ट के साथ अच्छी से सॉन्ग के साथ आती हैं। तो जनाब उनकी रिक्वेस्ट पे हम सुन रहे हैं आज जीशान रोखड़ी को।

0: आरजनाब सुनते रहिए वन एंड अबव. ऑलराइट, टाइम कम रह गया, मुकाबला सख्त. अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है आप?
0: जी हम ठीक ठाक. कौन हमारे साथ?
1: जी मोहम्मद शहजाद शाहबाद से.
0: कैसे हैं? खैरियत से हैं?
1: शो सुन रहे हैं? जी जी आपका शो तो सुनते, कोई मिस नहीं किया जब के आ रहे हैं ना.
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया.
1: माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें होती है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है. ये बातें हमें सबक मिलता है ये टॉपिक से.
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया.
1: मौजू लेकर आते जो आप बोलते हैं वहाँ पे सबक मिलता है. देखे खवातीन जो मेरे हिसाब से ना ज्यादा काम जो है ना खवातीन गाँव में करती है. सुबह सुबह 4 बजे उठती है, अपना आटा परात गूंथती है, वो रोटी खाना जो भी सफाई हुई सुबह सुबह माशाल्लाह काम कर लेती हैं और सारा दिन भी काम करती रहती हैं. ज्यादा मेहनत तो काम ज्यादा ना गांव वाली और करना पड़ता है.
0: सही, बिल्कुल सही. फिजिकली वो ज्यादा एक्टिव होती हैं.
1: हाँ जी, वो इतनी मेहनत तो इतना वजन उठा लेती है तो शहर वाले नहीं इतना उठा सकती.
0: बिल्कुल सही.
1: तो माशाल्लाह ये हम भी जो काम करते रहे ना तो हमारी तंदुरुस्ती ही होगी. शहर की हो गांव की खवातीन हो, मेहनत करनी चाहिए. जो घर का काम है फटाफट करना चाहिए तो हमारी तंदुरुस्ती सेहत होगी.
0: बिल्कुल सही.
1: हाँ ये बात है. तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका शो. माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे. बहुत बहुत दुआएं तो हम सब के लिए मेरा सलाम. जितने में आ रहे आपको भी सलाम.
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब. हमारे एक स्वीट से कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, लिसनर और कॉलर. और शो सुनते भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं. बहुत अच्छा लगता है. बहुत ही अहम पॉइंट उन्होंने रेज किया यहाँ पे, जो कि हम डिस्कस करने से रह गए थे कि देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि फिज़िकली अगर हम बात करें तो जो ख़वातीन गाँव में हैं, जो गाँव की लाइफ स्टाइल में जी रही हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ख़वातीन इन द सिटीज़ में भी लोग हैं एक्टिवली जो फिज़िकली भी एक्टिव होते हैं, लेकिन चूंकि सिटी लाइफ जो है वो थोड़ी बिजी लाइफ है, वो पढ़े लिखे लोगों की लाइफ है, तो वो आपका ब्रेन ड्रेन इतना ज़्यादा कर रही होती है कि आप फिज़िकली उतने एक्टिव नहीं होते या नहीं रह पाते. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: जी जी कौन है हमारे साथ?
2: मुझे रमज़ान अनवर गुजर कहते हैं और मैं मॉडल टाउन लाहौर से बोल रहा हूँ. रखते हैं औरों के लिए, अर्ज किया है, रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा
0: वो लोग कभी
2: रखते हैं औरों के लिए जो प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते. बहुत सी दुआओं के साथ 101 की सुनने वाली खूबसूरत समातों को आदाबर्त करता हूँ. कैसे मिजाज मैडम साहब?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से. क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से?
2: ट्रैफिक के वाले से ये कहना चाहूँगा कि लाहौर में बहुत आसानी है, शहर में बहुत आसानी. मैं अपनी मिसाल दूंगा, अगर मैं गांव में होता तो मेरे ये 2-3-4 बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए हैं, ये कम अज कम ना पहुंचे. क्योंकि पिंड में जाते जाते ही कोई 50-60 या 100 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में जाके यूनिवर्सिटी का क्याम होता है. बहुत मुश्किल है उधर से निकलना, गाँव से निकलना. लेकिन इधर लाहौर का ये फायदा हुआ है कि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे जाते हैं, अगर सुबह को तो शाम को अपने घर आ जाते हैं.
0: Nice.
2: अगर यही बच्चे फैसलाबाद में होते, मेरी यहाँ बेटियां या बेटे,
0: तो वो हॉस्टलाइड होते, हॉस्टल्स की लाइफ जी रहे होते. बिल्कुल.
2: तो अगर जिंदगी आसानी या खुशगवार चाहनी है, तो लंबी चाहनी है, कुदरत के करीब चाहनी है, तो फिर पिंड का रुख करें. उधर हरियाली है, उधर दूध खा लेते हैं, उधर लोग प्यार सच्चा और पक्का है, और इंसानियत में बहुत कदर करते हैं, बहुत कदरदान है. अगर पढ़ाना है बच्चों को तो फिर तैयार का रुख करें और सर्वाइव करें और मेहनत करें और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें अपने बच्चों के लिए, कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें. लाहौर में रहने का सबसे बड़ा एक ही मकसद है मेरा कि मेरे बच्चे कामयाब हों, मेरे बच्चों में वो कमी ना रहे जो मेरे में है. मैं नहीं पढ़ सका लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए. ये
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस.
2: अल्लाह पाक आपका इकबाल बुलंद करे. बहुत खूबसूरत बज़्म आपकी, आपका कीमती टाइम अता करने का बेहद शुक्रिया. खराजे अकीदत, खराजे तहसील पेश करता हूँ खूबसूरत शो पेश करने पर. 101 की इंतजामिया को अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान आइंदाबाद.
0: ऑलराइट, सो जनाब प्रोस एंड कॉन्स की बात हो रही है, बेनिफिट्स की बात हो रही है कि आप अगर शहर के सेटअप में रह रहे हैं तो क्या क्या आप पा सकते हैं, गांव में रह रहे हैं तो क्या क्या पा सकते हैं. सब कुछ है जनाब, हर जगह पे सेक्रीफाइसेस हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है. और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने हेल्दी लाइफ जीनी है, लंबी ज़िंदगी जीनी है, तो आपको नेचर से करीब रहना पड़ेगा. जितना हम नेचर से कटते जाते हैं उतना हम घिरते जाते हैं इश्यूज़ में, हेल्थ के इश्यूज़ में और दीगर जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ में. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम वनवन. कैसे भी सुनने वालों को मेरी तरफ से मुस्कुराता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो सादिया जी गाना प्ले करने का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा. मेरे साथ साथ मेरी बेटियाँ भी, दो सुमेरा और हुमेरा, वो भी सुन रही हैं.
0: बिल्कुल सही.
3: हाँ जी, तो ये मैं कहूँगी कि गाँव और देहात, अब तो गाँव में भी बहुत सी सहूलतें, बहुत कुछ है. पहले कुछ शॉपिंग करनी होती थी शहर में जाना पड़ता था उन लोगों को. अब गांव देहातों में काफी दुकानें, मतलब शॉप बन चुकी हैं नजदीक. गांव देहात वो लोग ये है कि जब फजर की अजान होती है ना, वो सब मर्द और औरतें, खवातीन जो है जाग जाती है सुबह के वक्त. मौत के बाद उन्होंने बाहर जाना होता है, बाहर की वाक सुबह की करनी होती है, और वाक के बाद जो है ना उन्होंने घर के काम जो है ना ये जरूरी करने होते हैं.
0: बिल्कुल सही.
3: हमारे ये है कि शहरों के हम लोग तो 9-9, 10-10 बजे सो के नहीं उठते. हमारी नींद ही नहीं पूरी होती.
0: हमारी अम्मियों का एक ही डायलॉग होता है, इनकी तो नींद ही पूरी नहीं होती.
3: हाँ बिल्कुल सही है. तो ये पहले जो पहले वक्तों के बुजुर्ग थे ना, वो इतना नहीं सोते थे. टाइम पे उन्होंने शाम को सोना और टाइम के साथ सुबह जाग जाना. और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी थी. बहुत ये जो आजकल शुगर, ब्लड प्रेशर, हर किसी को कोई ना कोई बीमारी, ये उस वक्त नहीं होती थी उन लोगों को.
0: बिल्कुल सही.
3: तो बहुत अच्छा शो, जबरदस्त शो गाना आपने प्ले कर दिया. तो मेरी तरफ से ना अलीफ भाई आए थे, उनको, तारिक भाई को, इतवाले सुन रहे हैं, फरी भी सुन रही है, सब सुनने वालों को, रुबीना जट्टी और रुजवाना, इन सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह
0: हाफिज. और जनाब शमीमा भी हमारे साथ मौजूद थी और बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि लाइफ जो है अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड वाली, वो आपको हेल्दी रखती है, फिट रखती है. सो जनाब राइट नाउ वी आर टूवर्ड्स नेक्स्ट सॉन्ग एंड आई रिमेम्बर विजिटिंग अ डॉक्टर. तो एक डॉक्टर साहब से बात हुई तो उनका यही मानना था कि जितनी बीमारियां मैंने शहर के लोगों में देखी हैं ना, देहात के लोगों में नहीं होती. यंग एज में बहुत सारे लोग ऐसी क्रोनिक डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, जो पहले हम बड़े बूढ़ों में 50 साल के बाद, 60 साल के बाद डायग्नोस होती थी, वो अब यंगस्टर्स में डायग्नोस हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल जो हमने शहरों में अडॉप्ट किए हुए हैं. ना वक्त पे सोते हैं, ना वक्त पे उठते हैं, ना रूटीन कोई फॉलो करते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं. और ये सारी चीज़ें, ये सारी हैबिट्स जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. सो जनाब मुझे प्यार हुआ था एक स्वीट सा मेलोडियस ट्रैक शामिल कर रहे शो में, कैफी खलील की आवाज़.

0: राइट, मुझे प्यार हुआ था, सच ब्यूटीफुल ट्रैक। और जनाब आखिरी आखिरी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
1: मोहम्मद उस्मान मोगल
0: जी। उस्मान साहब, क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: मैम, सबसे पहले तो आप जब भी प्रोग्राम करती हैं तो एंड कर देती हैं।
0: ओए होए होए।
1: जो आपकी मालूमात और टॉपिक तो हमारी जो मौजूदा हालात हो या गुजरे हुए हो या आने वाले हो, उसकी तरह आप जब रोशनी,
0: बहुत शुक्रिया,
1: तो हमेशा की तरह आपकी आवाज और अंदाज शरीर।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो जहाँ पे जितनी ज्यादा सहूलियात होंगी वहाँ जिंदगी टफ होगी। मुतमिन जिंदगी गुजारनी है तो देहातों में चले जाए, अगर टेंशन में जिंदगी गुजारनी है शहरों में चले जाए। हो सकता है कि इसके अंदर लोग इख्तलाफ करें मेरी बात से, ये उस्मान लोगों ने क्या बात कर दी है, लेकिन इसकी डिटेल देखो, टाइम इज द वेरी शॉर्ट
0: जी, बिल्कुल
1: हाँ जी, टॉल डिटेल में इसकी नहीं बता सकता मजीद, लेकिन मुतमिन जिंदगी जो मैंने अपनी जिंदगी का तजर्बा देखा है वो मुतमिन जिंदगी देहात नहीं है, क्योंकि हम मुख्तलिफ देहातों में मुख्तलिफ अजला में जाते हैं, पुरसकून पुर इत्मीनान जिंदगी वो गुजार रहे हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: जब हम उसके ऑपोजिट आते हैं, शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, छोड़ो क्योंकि मैं खुद भी लाहौर शहर में रहता हूँ, तो लेकिन हमारा जो शाहदरा टाउन है ये पिंड है, लेकिन दिखने में टाउन आता है, बोलने में पिंड आता है। तो जब इधर आते हैं यहाँ जिंदगी टफ हो जाती है।
0: सही, बिल्कुल सही।
1: ठीक है जी, बहुत
0: शुक्रिया।
1: लेकिन दिखने में टाउन आता है, बोलने में पिंड आता है। तो जब इधर आते हैं यहाँ जिंदगी टफ हो जाती है।

करते हैं शो में। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया जो लोग डायल कर रहे हैं, बार बार डायल कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पाई, आप लोगों से माजरत। आई नो बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बात करने के लिए, अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन दिस इज़ लक बाय चांस जनाब, क्या कह सकते हैं। इजाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फेसबुक पे साथ साथ, और कह रहे हैं कि बहुत अरसे बाद आज आपकी आवाज़ सुनी, तो बहुत अरसे बाद ही हम लौट कर आए हैं। थैंक यू सो मच, आप शो का हिस्सा बने। एंड आई मस्ट से कि दोनों तरह से देखें ज़िंदगी, तो हर जगह पर ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी इट्सेल्फ एक मुश्किल काम है, लेकिन चैलेंजेस उस्मान साहब की बात से मैं भी इत्तफाक करती हूँ कि जहाँ जहाँ आप फैसिलिटीज़ से करीब होते हैं वहीं वहीं आपके डिमांड्स जो हैं, आपसे जो उम्मीद है वो भी बढ़ती चली जाती है, आपकी ज़िंदगी टफ होती चली जाती है। आसाइशें वैसे भी कुछ हमें स्लो कर देती हैं, लेकिन गांव की जो ज़िंदगी है वो फिज़िकली आपको एक्टिव होना मांगती है, और शहर की ज़िंदगी की बात करें तो वहाँ पे आपको स्मार्ट होना पड़ता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अपने ब्रेन को अपने दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है, वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, भागना पड़ता है। इसकी निस्बत जो गांव की ज़िंदगी है वो स्लो पेस पे चलती है, आराम से चलती है, सादा होती है, वहाँ पे कोई डिमांड नहीं करता कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखा आपने देखा नहीं है ज़िंदगी कितनी बदल गई, आपका ध्यान ही नहीं है फ़ोन की तरफ लेकिन यहाँ पे हमें टिक टिक टिक सुई के साथ घड़ी की जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। हम दफ्तरों से घर चले जाते हैं फिर भी हमें अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं कोई अपडेट तो नहीं आ गई, कहीं कोई काम तो नहीं आ गया, कहीं अर्जेंसी तो नहीं आ गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे ब्रेन को हमारे दिमाग को इतना ऑक्यूपाइड रखती हैं कि हम मेंटली इतने ज़्यादा थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि एट द एंड हम बस गिरते हैं और सो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी किसी भी तरह से रेगुलराइज नहीं हो पाती है उस तरह से। अगर हम कहें कि हम बहुत हार्ड एंड फास्ट होकर किसी रूटीन को फॉलो करेंगे तो वो नहीं हो पाता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, जिनकी ज़िंदगी का जो पहिया है वो उल्टा घूम रहा होता है, एक तरह से सूरज चढ़ रहा होता है तो वो सो रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि ये प्रोफेशनल जिम्मेदारियां होती हैं और मजबूरियां होती हैं, इस तरह की चीज़ें कि जो जिनसे आपको गुजरना पड़ता है और आपकी ज़िंदगी का तकाजा ये होता है। एनीवे जनाब, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं खूबसूरत सी बातों के साथ, और इस उम्मीद इस ख्वाहिश के साथ कि आपसे होगी फिर से मुलाकात नेक्स्ट मंडे इन द सेम शो लेडीज लाउंज में। आई मस्ट से आयरन लेडी टू ऑल द लेडीज लिसनिंग मी राइट नाउ, जो नहीं सुन रही उनको भी मैं कहूँगी आप रेजिलियंट हैं, आप पावरफुल हैं, आपके होने से जिंदगी है, आप यकीन करें हमारे घरों में हमारे होने से रंग है, हमारे होने से जिंदगी है, कोई जिंदगी है ख्वातीन के बगैर, आप गांव में हैं या आप शहर में हैं, हम यही कहेंगे कि रंग आपसे है, जिंदगी आपसे है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, और खुद को कभी भी हकीर मत समझें, खुद को कभी भी कम मत समझें, और लगे रहें, आगे बढ़ते रहें। So everyone, take care of yourself, stick around. This is FM 101 Radio Pakistan. हमारे जाने का वक्त है, लेकिन कोई और आएगा। Take care, फियामान अल्लाह।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

यहाँ तो टिक्कू है।

0: पोर्टर्स ने उसको सराहा। तो देखिए, जो इकोनॉमी होती है वो इसी तरह चलती है कि जब जैसी गुंजाइश पैदा हो वो आप मुंतकिल करें। और मैं ये समझता हूँ, IMF प्रोग्राम में होते हुए भी जो रिफॉर्म्स हमने होम ग्रोन किए, शहबाज शरीफ साहब ने लीड किया उन रिफॉर्म्स को, वो ऐसे रिफॉर्म्स थे जिसको सराहा गया इंटरनेशनल लेवल पे, और इसीलिए गुंजाइश पैदा हुई कि रिलीफ जो है वो निचली सतह पे मुंतकिल किया जा सके। एक बात। दूसरा, देखिए ये जो जंगी हालात हैं और जो नकलो हरकत है बैरी जहाज़ों की, वो इससे मुतासर हुई है, तो उससे RLNG की सप्लाई भी मुतासर हुई है, जिसकी बिना पे कुछ लोड शेडिंग की जा रही थी, वो भी वजीर अजम साहब ने कहा कैप करें 2 घंटे से ऊपर ना हो, बेस्ड ऑन ये जो ऑयल सप्लाई है। बिजली के रिफॉर्म्स जो हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, मैं समझता हूँ कि वो तारीखी रिफॉर्म्स हैं, मजीद इसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि जितने भी आप अगर देखें कि आते ही जो IPPs वाला मामला है उसको रिजॉल्व किया गया, उससे गुंजाइश पैदा की गई, उसके बाद अब भी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। जो सोलर के हवाले से एक डिबेट थी, वजीर अजम साहब ने खुद इंटरवीन करके उस डिबेट को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, और अब पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर पूरी तवज्जो है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये क्राइसिस हल होता है बिजली के हवाले से भी मजीद बेहतरी आएगी। लास्ट क्वेश्चन जी, 1.5 घंटा। अच्छा चलिए,
1: सवाल ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की, ओग्रा पे पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है, पेट्रोल पे कितना चीजें हैं। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में 17% लोकल प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल की, लेकिन वो 17% जो है वो हमें फार्मूले में कहीं पे भी नजर नहीं आता कि उसका इम्पैक्ट जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के फार्मूले में नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत का जो फार्मूला है वो टोटली इम्पोर्ट बेस्ड ऑयल पे है, तो ये 17% जो है रिलीफ आवाम को नहीं दिया जा सकता।
2: देखें, मेरी गुजारिश इतनी है कि आपको थोड़ा सा तारीख में जाके ये देखना पड़ेगा कि ये जब रिफाइनरियां लगाई गई थी तो इनकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत को तयन करने के लिए इनको एक IPP मॉडल की तरह एक गारंटीड रिटर्न के तहत चलाया जाता था, जिसको 2002 में जब ड्राई आउट्स हुए, जब मसाइल आए, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको डीरेगुलेशन और इंपोर्ट पैरिटी की तरफ ले जाना शुरू किया। क्योंकि अगर आपकी 5 लाख बैरल तकरीबन रोज़ की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और उसके बाद भी आपको रिफाइंड प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता है, तो 50,000 60,000 बैरल रोज़ का कोई बहुत बड़ा उसके आंसर नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसकी भी जो कीमत है वो डॉलराइज्ड और जो उनके कंसेशन अग्रीमेंट्स जहाँ से ये आ रही है उसके ऊपर तय की गई है। तो जो फलसफा हुकूमत आगे लेके चल रही है वो ये है कि इस काम से हुकूमत को बाहर निकालना है, क्योंकि IT मिनिस्टर साहिबा यहाँ पे बैठी हैं, ये आपको इस चीज़ के ऊपर यकीन दहानी और इसकी तफसील भी दे सकती हैं कि आपने ये भी देखा तारीख में कि हुकूमत जिस काम से बाहर आई है, जिस काम के अंदर मुसाबकत को उसने फ़रोग दिया है, तो दुनिया की सस्ती तरीन वहां पे सर्विस और अच्छी कस्टमर सर्विस मिली है, बशमूल मोबाइल टेलीफोनी के अंदर। तो अगर आपने उसकी तरफ आगे बढ़ना है तो आपने बंदिशें बढ़ानी नहीं है, बंदिशें खोलनी है ताकि बाहर से सरमाया आए और आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई जिद्दत के साथ टेक्नोलॉजी को आप लेके आ सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता उस रुख को, उस आखिरी मंजिल को सामने रखते हुए हम फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सारा जो बेनिफिट है मेरे भाई, अगर आज मकामी मंडियों में डीजल 2 गुना हो गया है और पाकिस्तान में 2 गुना नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो गुंजाइश निकाली होगी ना। तो आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह जो हो सकेगा भरपूर कोशिश करें। सर
0: आप वैसे भी फिलोसफर हैं।
1: नहीं सर, मैं तो इनके डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सर, 28 फरवरी को ईरान पर अटैक होता है,
2: जी सर,
1: उससे पहले 9 माह के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लें, आगे फाइनेंस की आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, उनका प्रॉफिट देख लें और जंग के बाद का प्रॉफिट देख लें, डबल से ज़्यादा हो गया। आप OGDCL का देख लें, 9 महीने में 112 था, जंग के बाद 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में 128 अरब कमाए। रिफाइनरीज के प्रॉफिट डबल हो गए हैं, उनके शेयर डबल हो गए हैं विंडफॉल प्रॉफिट से। आगे कौन सी फिलासफी आप हमें बता रहे हैं? आपने $70-$70 क्रैक्स मार्जिन कमाया है ऑयल रिफाइनरीज ने, जिसको आपने पिछले 10 दिन पहले $42 पर कैप किया, जिससे ₹30 डीजल कम है।

0: जो जंग से पहले $5 से $6 था, अब वो $40 और $70 पे कमा रहे हैं। वो आपने खुली छुट्टी दी हुई है और आवाम को डीजल में, आप अगर डीजल की बात कर रहे हैं, आप इंडिया में 100 रुपए लीटर पाकिस्तानी करेंसी में डीजल कम है, बांग्लादेश में कम है, वो सब्सिडी नहीं दे रहे।
1: अब जवाब दूं,
0: आपकी रिफाइनरीज को आपने खुली छुट्टी दी हुई है विंडफॉल पे और आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनियों की। एक तो आप 130 अरब रुपए पीडीएल कमा रहे हैं महीने का, ऊपर से रिफाइनरीज भी खरबों रुपए कमा रहे हैं, ये 100-200 अरब की बात नहीं है।
1: मैं जवाब दूं जी, गुजारिश ये है सर कि आपने एक तो कुछ हकायक को गुचमुच कर दिया। मेरी अब ज़रा बात सुनिएगा, ज़रा अर्ज़ तो सुन लीजिए, अर्ज़ तो सुन ले सर। जो पेट्रोल का क्रैक है वो $5 यकीनन $5-$10 के दरमियान रहता था, डीजल का क्रैक जंग से पहले $5 का था, तो आप जो जुर्माना मेरे पे डालेंगे मैं आपसे कबूल कर लूँगा, ठीक है। पेट्रोल को डीजल और डीजल को पेट्रोल से ना मिक्स करें, क्योंकि दोनों बहुत मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। डीजल की कीमत 3 गुना बढ़ी है आलमी मंडी में, $285 के ऊपर किस दिन फ्लैट्स गया मैं आपको वो बता दूंगा। क्रैक स्प्रेड जो बढ़ा है उसके पीछे आपको समझने की भी ज़रूरत है कि हुआ क्या। जब रिफाइनरीज की इम्पेयरमेंट हुई कैपेसिटी की, तो रिफाइंड प्रोडक्ट मिलना नायाब हो गया। तो जो प्रॉफिट जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक बुनियादी आंसर ये भी है कि जो रिफाइनरी 50% चलती थी उसका खाम तेल यकीनी बना के हमने उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 100% की। आज पार्को 100% यूटिलाइजेशन के ऊपर चल रही है। आज PSO की जो रिफाइनरी है उसका 70% उसकी यूटिलाइजेशन है, इसीलिए वो आज डीजल यहाँ पे आपको अवाम को मुहैया हो रहा है। अब आ जाएं कि जी आपने क्या खाम तेल की फॉर्मूले पे पहले नहीं जा सकते थे, हम पहले भी गए थे, और उस वक्त जब ये उठाया ही ना क्रिटिसिज्म कि जी आपने दोबारा चुप करके आपने रिफाइंड प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर दिया महीने डेढ़ के बाद, तो आप उस वक्त मेरे साथ बैठे सर, मैं आपको दिखा दूंगा कि रिफाइंड प्रोडक्ट और उसका क्रैक कम हो गया था, कंज्यूमर का फायदा था कि हम दोबारा रिफाइंड प्रोडक्ट के अंदर जाते, क्योंकि जंग थमने जा रही थी और फरवानी आपकी जो रिफाइनरीज की एक दफ़ा दोबारा शुरू हो गई थी। जिस तरह से ये तकलीफ दोबारा आई है उसके मुताबिक आपने वो उनको कायल किया है और उनको एक क्रूड बेस्ड फार्मूला पे लेके गए हैं। और इसके अलावा मेरे भाई आपसे मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि ये सारी कंपनियों की बैलेंस शीटें बिल्कुल आपके सामने मुहैया हैं, आप PSO के ऊपर जाके उनसे पूछिएगा उनका टैक्स रेट कितना है। 60% टैक्स रेट है, तो जितना भी पैसा बनाया है या नहीं बनाया वो टैक्स होके अवाम के पास आएगा, और वो कमज़ोर तरीन तबका जात जो हैं उनको तहफ़ देने के लिए जो हुकूमत अपने बजटरी फ्रेमवर्क में गुंजाइश निकाल सकती है उसके अंदर इस्तेमाल होगा। इसके अंदर अगर किसी जगह के ऊपर मैंने किसी हिंसे का भी आगे पीछे कुछ किया हो, जिस तरह आपने छोटा मोटा कर दिया था, तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं जी।
2: इस पे मेरी गुजारिश सुन ले, सबका एक एक है ना, हम बिल्कुल जल्दी में नहीं है, एक और सेशन करेंगे, ब्रेक कर लें, एक मौका दें। नहीं, वो हम भी इधर ही मौजूद हैं, थोड़ी ब्रेक ले लें, हमने इस पे जाके काम भी करना है, दोबारा कर लेते हैं। आप अब जितते हैं, क्या कहते वो जाते हुए करेंगे आप
3: साइड पे करेंगे।
4: वफाकी वज़ीरा अताउल्लाह तारड़, शहज़ादा फातमा ख्वाजा और अली परवेज़ मलिक की वज़ीर-ए-आज़म फ्यूल रिलीफ स्कीम।
5: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव FM 101।
6: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: two and three wheelers, as well as vehicles with engine capacities of up to 800 cc. She said under the scheme, eligible beneficiaries will receive a fuel subsidy of 100 rupees per litre. Sharing details of the registration process, the Minister for Information Technology said eligible applicants can register from home by sending their CNIC number, plate number, the first letter of their province and the vehicle's registration date to 9771. Lebanese Interior Minister Ahmed Al-Hajjar is in Islamabad on a two-day official visit to hold talks with Pakistani leadership aimed at strengthening bilateral relations and enhancing cooperation between the two countries.
1: Hi, this is FM 101. मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं बच्चे बूढ़े खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इस्तनाब करें नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें रेडियो टीवी अखबारात फोन एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें हिफाजत सिर्फ एहतियात में
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें दीवारों छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके
3: दिस इज
1: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Panorama!
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: 오케이.
1: 오케이.
2: This is FM 101.
3: There's music, and then there's magic.

All right. Welcome back once again, Radio Pakistan FM 101 के live on Lahore studio से. आप सुन रहे हैं जी आज हमदा खान को, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक 8 बजे तक. All right जी, आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, ऑफर कॉल्स हम स्टार्ट करेंगे 04211000101 पर आप कॉल कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जी फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/FM101Lahore के पेज पर आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. और मैं कुछ आपको हैक्स बताने जा रही हूँ जो कि आप अपने ब्रेन को चीट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने ब्रेन को हैक कर सकते हैं. उसके लिए कुछ हैक्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि शायद आप कभी अप्लाई करें और शायद कभी आप मुझे याद करें. और जी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मुझे हंसी भी आ रही बताते हुए. एक होता है पावर पोज, और उसमें क्या करना होता है, उसमें आप अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो है ना, वो जैसे बचपन में कहते थे कमर पे हाथ रख के, दोनों हाथ कमर पे रख के जो है ना वो खड़े हो जाते थे, कभी गुस्सा आता था या कभी बड़ा एक वो होता था ना, जिड़ाएगा वेख लेंगे. सो वो वाला पोज जो है ना, अगर आप 2 मिनट तक करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंक्रीज होता है. फिर सेकेंडली एक चीज़ है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप एक ज़ेब्रा रूल है वो आप कर सकते हैं कि कुछ भी ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि ज़ेब्रा ब्लैक एंड वाइट होता है, सो आप ब्लैक एंड वाइट की तरफ अगर देखते हैं ना, तो आपका गुस्सा जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. और जी नेम ट्रिक एक चीज़ है कि अगर आपने किसी की भी अटेंशन, किसी भी कन्वर्सेशन में कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू हो रही है, और आपने किसी की अटेंशन जो है ना वो अपनी तरफ कर दी है, तो आप क्या करें कि आप कन्वर्सेशन के दौरान जो है ना, बातचीत के दौरान जो है, उस इंसान का नाम लेकर बात करें. उससे क्या होगा कि उसकी जो अटेंशन है वो आपकी तरफ होगी और वो आपकी बात को जो है वो गौर से सुनेगा. उसके अलावा जी एक डिसीजन हैक होता है कि जी आप कहते हैं कि जब भी आप कोई डिसीजन लेना, तो हमेशा ये चीज़ सोचें कि क्या ये चीज़ मैं 10 साल में करूँगी या करूँगा, और उसकी बेसिस पे जो है वो अपना डिसीजन लें. और इसी तरह से ऐसा होता है कि जब आपने अपना मूड अच्छा रखना हो, तो आपने क्या करना है कि आपने लिखना है हर दिन कि आपकी 3 छोटी छोटी जीत जो होती है ना, विन होती है, कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये हासिल किया, उसको जो है वो आप लिख लें.

अच्छा जी, अगर आपने मेमोरी ट्रिक यूज़ करनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने कुछ भी नया सीखा है तो आपने उसको 90 सेकंड्स में जो है ना रिपीट करते जाना करते जाना, तो इस तरह से ना आपको याद हो जाएगा। वैसे ये सबक याद करने में हम यूज़ कर सकते हैं। रट्टा ही लग रहा है 90 सेकंड्स रिपीट करते रहना तो आपको याद हो ही जाएगा। राइट, जैसे मैं रट्टे में बहुत बुरी थी। मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना रट्टा बड़ा पक्का होता है, रट्टा लगा लेते हैं आराम से जो है ना, रट्टा लगा हुआ है और रट्टा फिर, लेकिन रट्टे का एक नुकसान भी होता था ना कि अगर सवाल कुछ इधर उधर से आ गया है और आपका रट्टा लगा हुआ है तो आपने कहना ये क्या हो गया। तो इसलिए जी रट्टा जो है वो फंसा भी देता है, लेकिन रट्टा लगाने वाले भी क्या पक्का रट्टा लगाते थे। मतलब याद आ गई मुझे एक वो मेमोरी है कि मतलब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो रट्टे में बड़े पक्के होते थे। और राइट जी, अगर आपने रट्टा लगाना है तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा जी एक है कि जी आपने इमोशनली अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो आपने अपने आप को बस ये पूछना है कि मैं एक्चुअली इस टाइम में क्या फील कर रही हूँ या क्या फील कर रहा हूँ, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, आपका ब्रेन आपको खुद ही जवाब देगा, आपका दिल आपको खुद ही जवाब देगा कि क्या है एक्चुअली, क्या है जिस वजह से आप इतना इमोशनल फील कर रहे हैं।

0: और राइट जी, आज 14 सितंबर है और आज किसकी सालगिरह है जी? आज फरहान सईद की सालगिरह है और एक ट्रैक प्ले करते हैं, उन्हीं का ट्रैक है, डेडिकेट करते हैं टू ऑल द फैंस ऑफ फरहान सईद, पाकिस्तानी सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर और लीड वोकलिस्ट भी थे, फॉर्मर लीड वोकलिस्ट कह सकते हैं जल बैंड के फरहान सईद, और अब एक्टिंग भी करते हैं, सो ये ट्रैक जो है वो उनका प्ले करते हैं और उनके सब फैंस को डेडिकेट करते हैं।
1: कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या,

जी, आज का मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बात कर रहा होता है, जैसे मैं ही बात कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग तो लिसनर्स हुए ना. सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी की बात सुन रहे होते, कोई बात कर रहा होता है, आप बड़ी खामोशी से, बड़े इत्मीनान से जो है ना सामने वाले को लग रहा होता है कि मतलब अभी से कोई सवाल भी नहीं किया, कोई सवाल जवाब भी नहीं हो रहे, तो उसका मतलब ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है मेरी और बहुत जो है ना गौर से सुनी जा रही है. मतलब एक गुड लिसनर नहीं होता, एक अच्छा सुनने वाला. सो आप अच्छे सुनने वाले हैं या फिर आप सिर्फ एक्ट करते हैं और आप अच्छा सुनने की एक्टिंग करते हैं और एक्चुअली जो है ना आपका दिमाग कहीं और पहुंचा होता है, आप किसी और सोचों में होते हैं और आप अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं, लेकिन आप सामने वाले को शो करा रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं तो सुन रही हूँ, और अगला बंदा भी सोच रहा होता कि अच्छा इसने कोई सवाल नहीं किया, इसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, इसको कोई इख्तलाफ नहीं है मेरी बात से. इसका मतलब ये जो है ना प्रॉपरली मेरी बात जो है ना वो सुन रही है और उसके साथ जो है ना एग्री भी कर रही है. सो आप ऐसा ही करते हैं या आप भी कभी कभी ऐसे करते हैं? वैसे मैं कभी कभी ऐसे भी करती हूँ, कभी कभी करना भी पड़ता है. कभी कभी खुद ही होता है ना कि आपका दिमाग, आप किसी की बात सुन रहे होते हैं और आपका दिमाग कहीं और ही गुम हो जाता है और आप अपनी पैरेलल यूनिवर्स में जो है ना आपकी अपनी मूवी चल रही होती है और आप अपने ही कुछ सोच रहे होते, अपनी कोई कहानी सोच रहे होते, अपनी कोई फिक्र सोच रहे होते. समटाइम्स वो उसकी बात से रिलेटेड भी होती है जो सामने वाला आपसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि नहीं, आपको नहीं पता होता कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, आप सिर्फ सर हिला रहे होते हैं, हाँ हाँ.

ऑलराइट जी, ज़रा सोचें कि आप अच्छे लिसनर हैं या आप जो है वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, और समटाइम्स आप जो है वो अपनी दुनिया में गायब होते हैं, अपनी दुनिया में खो गए होते हैं, और आप इससे पक्की एक्टिंग करते हैं ना कि अगले को लगता है कि हाँ ये वाकई जो है ना अच्छे लिसनर हैं, या आप वाकई अटेंशन देते हैं, और समटाइम्स वो कोशिश भी करते हैं ना हम, लेकिन समटाइम्स होता है कि आपका अपना दिमाग जो है ना वो कहीं और घूम रहा होता है, कहीं और चल रहा होता है। और ऐसे ही कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम जैसे किसी गैदरिंग से वापस आए हैं, और हम जो है वो जब वापस आ जाते हैं ना, तो फिर हमारा दिमाग जो है ना बहुत कुछ सोच रहा होता है। एक्चुअली तो हम वापस आ चुके होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपका दिमाग जो है ना वो सारा कुछ रीप्ले करना शुरू कर देता है कि क्या हुआ, किसने क्या कहा, कैसा लगा, क्यों हुआ। छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना उस वक्त, जो उस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होती ना, वो आपका दिमाग जो है ना वो घर आकर, जब आप फिज़िकली घर आ जाते हैं, लेकिन मेंटली आपका माइंड जो है ना वो कहीं और होता है, और मेंटली जो है ना वो फिर आप सारे इमोशंस को सोच रहे होते हैं, चाहे वो खुशी का इमोशन हो, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे वो कोई ऑकवर्डनेस हो, कोई एम्बैरसमेंट हो, आप उस सारी चीज़ को जो है वो ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं जाते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं ना, तो आपने कभी भी चीज़ों को ओवरथिंक नहीं करना, और आपने बस अपने आप को ये कहना कि हो गया, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, नाउ इट्स ओवर, ठीक है जी, उस सिचुएशन से बाहर आ जाना। लेकिन अभी जो सवाल है जी, अभी सवाल ये है कि आप एक अच्छे लिसनर हैं या नहीं है, इस बात का मुझे भी पता चल जाएगा जब आप लोग कॉल्स करेंगे और जब आप लोग कहेंगे कि वो टॉपिक क्या था। कभी कभी ऐसा होता है ऐसे ऐसे कॉलर्स हमारे कॉल करते हैं, और फिर कॉल करके कहते हैं वो हमने टॉपिक सुना नहीं था। और आई जी अनदर स्ट्राइक एंजॉय करें, उसके बाद हम आपके कमेंट्स भी शामिल करते हैं और ऑफ कॉल्स भी हम साथ साथ शामिल करते हैं।

All right. Welcome back once again. Ready Pakistan for 101 Khel Live on Allah Studio. Saab sunne aaj hum Khan ko mera aapka saath rahega. Tick tick tick ji 8 baje tak. Aur main ye baat kar rahi thi ki jaise hum log aate hain, hum aake show karte hain, hum itni sari baatein karke jaate hain. To hum ye umeed rakhte hain na ki jo aap log sun rahe hain, hamare listeners hain, aap log ek acche listeners hain aur aap jo hai na achhi cheezon ko sun rahe hain aur attentive hain. Lekin kabhi kabhi aisa hota hai na ki koi samne baith ke aapse baat kar raha ho aur aapko ek puri story suna raha ho apni aur aap bas sar hila रहे हैं और आप ना कोई सवाल कर रहे हैं ना कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं चेंज हो रहे, आप ऐसे कर रहे हैं तो होता क्या है कि जी सामने वाले को लगता है कि आप बड़े अच्छे लिसनर हैं और आप जो है ना उसकी पूरी बात को जो इत्मीनान से सुन रहे हैं. लेकिन होता क्या है कि इन बिटवीन कभी कभी तो हम वाकई अच्छे लिसनर होते हैं, कभी कभी हम अच्छे लिसनर बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा सुन सकते हैं, हम तसल्ली से सुन सकते हैं, कभी कभी हम एक्टिंग कर रहे होते हैं कि बस हम सुन रहे हैं, जबकि दिमाग जो है ना हमारा कहीं और पहुंच चुका होता है और हम कुछ और अपनी स्टोरी हमारी चल रही होती है माइंड में, हम अपनी मूवी चला रहे होते हैं माइंड में, अपनी टेंशनें चल रही होती हैं या उस बात से रेलिवेंट हमें कोई अपना मसला याद आ जाता है और हम उसको सोचने बैठ जाते हैं, लेकिन सामने वाले को हम चूक कराते हैं, नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ. और जी ऑफर कॉल पर हमारे साथ 0422111001 पर रजा चौधरी मेरे साथ मौजूद थे और उनसे जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आरजेज को तो बड़ा गौर से सुनते हैं. मैं कहा नहीं आरजेज नहीं, देखिए अगर कोई सामने बैठ के बात कर रहा हो तो फिर आप क्या कहते हैं, कहते हैं अगर कोई कहानी सुनाने लग जाए ना तो फिर मुझे नींद आने लग जाती है, लेकिन हाँ अगर कोई सही वाली बात करे तो फिर जो है वो ठीक है, फिर मैं उसको सुनता हूँ, लेकिन अगर कोई कहानी करे तो फिर मैं उसको चुप भी करा देता हूँ. तो दिस इज़ द वे कि मतलब आप या तो अगले को कहानी फिर सुनाने दें और आप सिर्फ नोडिंग करते जाएँ, आप सिर्फ सर हिलाते जाएँ, एक्ट करते रहें, या फिर आप अगले को टोक देंगे कि नहीं भाई इतना टाइम नहीं है. सो ही इज़ द वन जो कि अगले को टोक देते हैं कि नहीं भाई कोई काम की बात करनी है तो करो, इतनी लंबी कहानी जो है ना एक बात से 10 बातें और निकालना, वो जो है ये कहते हैं कि मैं नहीं करता, उसको मैं नहीं सुनता, उससे मुझे नींद आने लग जाती है. और बाकी आरजेस की इन्होंने बात की कि आरजेस का जब शो सुनते हैं तो उसके बाद एक आरजे जो अपने शो में बातें कर जाता है वो पूरा हफ्ता जो है वो उस पर सोचते हैं. तो ये एक अच्छे लिसनर की निशानी है कि जो जो क्वेश्चंस जो जो चीज़ें हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं उसको आप पूरा हफ्ता जो है वो बैठ के सोचते हैं.

ऑल राइट जी, आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आप लोग अच्छे लिसनर हैं, अच्छा सुन सकते हैं और गौर से सुनते हैं, इत्मीनान से सुनते हैं, पूरे ध्यान से सुनते हैं, या फिर आप भी एक्टिंग कर सकते हैं और एक्टिंग करते भी हैं टाइम्स जब आप सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन सुनना नहीं भी चाह रहे होते और आपको सुनना भी पड़ता है। समटाइम्स होता है ना, कोई आपको कोई लेक्चर ही देने लग जाए या कोई अपनी कहानी सुनाने लग जाए और आपको लगता है कि अब मैंने टोका तो फिर बुरा लगेगा, बदतमीजी में शामिल होगा, तो चलो आप थोड़ी एक्टिंग कर लेते हैं। तो जी, आपने मुझे बताना कि आप किस साइड पे हैं, आप अच्छा सुन सकते हैं या फिर आप भी ऐसे ही करते हैं कि आप थोड़ी देर के बाद जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका दिमाग कहीं और चला जाता है और आप अपना ही कुछ सोचने लग जाते हैं। और जी, आप लोग कॉल कर सकते हैं 0421111 पर, उसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/F101Lahore के पेज पर, अपने जाने जी पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई नो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं तो कमेंट्स भी आप लोग शामिल करते हैं।

और एनर्जी बहुत तेज है आप लोग. मैंने सवाल किया कि आप लोग अच्छे लिसनर हैं या नहीं है, आप लोगों ने मेरे शो पे डाल दिया कमेंट आया जी हमें. हम शहजादा का कहते कि जी शो बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ कहते नहीं नहीं हम तो आपका शो जो है वो दिल से सुनते हैं. बिल्कुल ठीक है जी. बिल्कुल ठीक है.

और आई जी 6:55 PM ऑन द डायल। कुछ ही टाइम हमें न्यूज ब्रेक की जाने बढ़ना है। सवाल मेरा आप लोग से यही है, मुझे मार देगा। पता लग जाता है आप लोग अच्छे लिसनर हैं या नहीं है। सवाल ये कि जी आप लोग अच्छे लिसनर हैं। मैं रेडियो के हवाले से नहीं पूछ रही, मैं बींग एन आर जे नहीं पूछ रही, लेकिन मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी में जो डेली लाइफ होती है उसमें पूछ रही हूँ कि क्या अगर कोई आपसे बात कर रहा हो, कोई आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हो, तो क्या आप सुनते हैं, प्रॉपरली सुनते हैं, या फिर आप समटाइम्स एक्टिंग कर रहे होते हैं और आप अपनी ही किसी दुनिया में मगन हो जाते हैं, आपके दिमाग में अपनी कोई स्टोरी चलने लग जाती है, अपनी कोई मूवी चलने लग जाती है और आप बस सिर्फ सर हिला रहे होते हैं कि हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अभी जी हमारे साथ ऑफ द एयर उस्मान साहब मौजूद थे 4111 0011 पर, और उन्होंने कहा कि अगर कोई होता है ना कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने अच्छा लिसनर बनना है, आपने वाकई जो है ना वो सुकून से अगले की बात सुननी है या आपने सिर्फ एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने कहा कि जी उनके कोई नेबर हैं जो इस तरह से बहुत एक इरिटेटिंग, उन्होंने कहा कि वो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं और आज जो है ना उनके जिसे कहते हैं ना जकड़ में मैं आ गया। सो इनको भी आज उन्होंने जो है ना कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाई और फिर उसके बाद इन्होंने उनको रोकने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या समझाने के लिए, बताने के लिए कि मतलब इस तरह से आप इतनी अगर लंबा लेक्चर देंगे या कहानी सुनाएंगे तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता ना। एक हद तक एक इंसान अच्छा लिसनर होता है, गुड लिसनर होता है, आपकी बात को सुनेगा, तहमुल से आपसे सवाल करेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से लंबी लंबी कहानियाँ करेंगे और आपको लगेगा कि सबके पास इतना टाइम है, क्योंकि आजकल नहीं है टाइम, कौन किसकी इतनी कहानियाँ सुनता है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि इन्होंने उनकी बात से ही कोई इस तरह का सवाल निकाल के उनसे किया कि उनको सोचने पे मजबूर कर दिया जिसका उनके पास जवाब भी नहीं था। मेरी जान मुझे क्या ही पता। तो ये भी एक निशानी है ना कि आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप अच्छे लिसनर भी हैं और आप जो है वो उसी में से एक ऐसा सवाल निकाल के अगले के सामने रख देते हैं कि अगला कहता है कि अच्छा आना मुझे मार देगा तन्हाई, अब तो फंस गए। रुकता है अक्सर बिखरा है दिल का ये दफ्तर, कोई नहीं घर पर जाऊंगा किधर तक, आदत नहीं छूटती रोज वही जहाँ से शुरू किया सिफर से सिफर तक।

0: काम तो नहीं तू।
1: ऑलराइट जी, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। वैसे मुझे अच्छा लगा कि आप जो है ना थोड़ा सा इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा वो होशियार होना पड़ता है कि आप अगले की ही बातों में से एक ऐसा सवाल निकाल के सामने रखें कि अगला चुप हो जाए, चुप होने पर मजबूर हो जाए।
0: कैसे आसमां मेरी जा यूं ना जा बदलो ना तुम।
1: इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा वो होशियार होना पड़ता है कि आप अगले की ही बातों में से एक ऐसा सवाल निकाल के सामने रखें कि अगला चुप हो जाए, चुप होने पे मजबूर हो जाए।

0: कराने के लिए कभी उधर बहुत बोली जा रहे हैं कहानी सुनाई जा रही है, ड्रैग करी जा रहे हैं। तो खुदारा अगर कोई ऐसे करता है तो प्लीज़ ना किया करें, बाकी जो है ना सामने वाला बंदा इरिटेट हो जाता है और वो एक अच्छा लिसनर फिर नहीं रहता। समटाइम्स जो है ना उसको बस होता है कि किसी तरह से रोके इनको, रोके किस तरह से। सो दिस इज़ द वे, आप इस तरह से रोक सकते हैं, आप इस तरह से कोई इस तरह का सवाल कर सकते हैं जिसकी वजह से सामने वाला जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जी ये अब मैंने इसको क्या जवाब देना है, मैं क्या जवाब दूं। तो बिल्कुल जी, आप इस तरह का कोई सवाल कर सकते हैं और जिसकी वजह से जो है वो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए और सामने वाला कहे कि ये क्या हो गया, ये मुझसे क्या सवाल कर लिया। और राइट जी, अभी जो है वो हमें न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ना है, सो न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, न्यूज़ ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। सवाल वो ये कि जी आप एक अच्छे लिसनर हैं या फिर आप भी सामने वाले को बस एक्टिंग करके दिखा रहे होते कि मैं सुन रहा हूँ। और राइट जी, न्यूज़ ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, दिस इज़ एफएम 101।
1: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuwade.

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। ईमान वाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर ने कहा है कि वजीर आजम की फ्यूल रिलीफ स्कीम से आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए अंदराज का आसान तरीकेकार मुतारिफ कराया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और मलेशिया और इंडोनेशिया की बहरिया के सरबराह ने आज रावलपिंडी में मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबे में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के अजला पशीन और मस्तूम में 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
1: Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर।
3: There's music. And then there's magic. One above FM 101.
4: Keep smiling and drive carefully. Okay?
5: Okay.
6: This is FM 101.
7: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

right, ji, all right. Welcome back once again to Radio Pakistan FM 101 ke live on Lahore studio se. आप सुन रहे हैं आज हमदा खान को, मेरा और आपका साथ रहेगा. ठीक ठीक ठीक जी, 8 बजे तक, 7:19 हो गए. बहुत सारे ऑफ द एयर कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे, 04 2111 0011 पर, और लाइव कॉल्स का सिलसिला भी हम शुरू करने लगे. इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/FM101 लाहौर के पेज पे आपने जाना जी. पोस्ट अपडेट लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. और सवाल वही है. सवाल ये है कि जी आप लोग अच्छे लिसनर हैं या फिर आप भी एक्टिंग करते हैं. कोई अपनी लंबी कहानी सुनाने लग जाए तो या तो आप खो जाते हैं अपनी कहानियों में, या फिर आप एक्टिंग करते हैं कि आप बस सुन रहे हैं. और राइट जी, अहसन खान हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने सबूत दिए कि ये अच्छे लिसनर हैं. इन्होंने कहा कि आपकी बातें सुनते सुनते कॉल मिलाते मिलाते जो है मशीन में इनकी उंगली आने लगी थी, तो एक अच्छे लिसनर होने का इन्होंने सबूत दिया. इसके अलावा इन्होंने कहा कि इनके इर्द गिर्द भी ऐसे हैं लोग जो कहानी बहुत लंबी किसी एक टॉपिक पर डिबेट शुरू करते हैं और फिर घंटा घंटा शुरू रहते हैं, और कहते हैं कि जहाँ कहीं वो थोड़ी सांस लेते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टॉपिक चेंज कर दूँ और मैं उनसे जो है ना कोई और गुफ्तगू, कोई फसलों के बारे में, कोई इधर उधर, ताकि वो थोड़ा सा जो है ना अपने मौजू से हट जाएँ और थोड़ी सी बात जो है ना वो ख़त्म हो जाए. तो ये भी अच्छा तरीका है जी. ये तरीका जो है वो हमने दूसरे हमारे कॉलर से सुना है कि आप या तो उनसे कोई ऐसा सवाल कर दो या फिर आप उनके पॉज लेने का. कभी कभी ऐसा ना ऐसा भी होता है कि आप एक्चुअली जो है ना वेट कर रहे होते कि कहाँ पॉज लेंगे, और आपको नहीं समझ आ रहा होता कि इन्होंने कहाँ पॉज लेना है और कहाँ पर जो है ना आप इंटरवीन कर सकते हैं, कहाँ पर आप अपनी बात जो है ना बीच में एड अप कर सकते हैं कि चलो मैं अब टॉपिक चेंज करूँ ताकि इस तरफ से तो हटे ना. ऑलराइट जी, इसके साथ साथ तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और तारिक साहब भी हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं. उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, और उसके अलावा जो कहानी बनाते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ड्रैग करने लग जाते हैं अपनी बातों को, वो कहते हैं कि उनको जो है ना उनके लिहाज से जवाब देना चाहिए. और उन्होंने कहा कि अगर वो फ़नकारी करें तो हमें भी पता है कि हमने कैसे हैंडल करना है, हम भी बड़े फ़नकार हैं. तो बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि फेस रीडिंग से ही आपको पता चल जाता है कि कौन कहानी कर रहा है और कौन जो है वो हकीकत में कोई एक्चुअली अपनी बात बता रहा है, कोई एक्चुअली अपनी हैपनिंग बता रहा है, जो उसके साथ हुआ है, कोई आप बीती बता रहा है, या कुछ भी आपके साथ जो है ना एक्चुअल बात करना चाह रहा है. तो ये आपको उसके चेहरे के तासुरात से भी पता चल जाता है. और सेकेंडली जी, इन्होंने कहा कि जी मैं पहचान लेता हूँ, ज़िंदगी का तजर्बा है और मुझे पता है कि फिर उसको मैं उसके लिहाज से ही डील करता हूँ. अगर कोई कहानी कर रहा हो तो उसको उसके लिहाज से डील करते हैं. और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हकीकत जो है वो बड़ी ज़रूरी है. बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं ना कि अगर कोई सुन रहा है तो फिर अपनी सुना ही जाते हैं, लेकिन यकीन माने ऐसा करने से जो है ना आपकी अपनी इज्जत जो है ना दूसरे की नज़र में कम होती है, क्योंकि एक हद तक तो कोई ना कोई सुन लेगा, उसके बाद या तो वो आपको टोकने की कोशिश करेगा या फिर वो सिर्फ एक्टिंग करेगा. अगर वो टोक नहीं सकता, वो सिर्फ एक्टिंग करेगा कि वो आपकी बात सुन रहा है, या फिर उसके बाद जो है ना वो आपको जवाब दे देगा कि प्लीज़ बस कर दे. और राइट जी, इसके साथ साथ जी इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद थे, इनका कमेंट भी हम शामिल करते हैं. और इसके साथ जी हमारे साथ मोहम्मद सलमान मौजूद थे, और मंडे के हवाले से इन्होंने कहा कि मंडे वाले दिन वाकई ऐसे ही होता है कि सुबह उठ के हम सोचते हैं कि काश संडे हो. मैं भी वैसे ऐसे ही सोचती हूँ कि काश झूठ ही हो कि मंडे है. और अर्जी, बोलने के हवाले से इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है, और मैं इस बात को सोच भी रही हूँ. इन्होंने कहा कि मैं जो इतना बोल सकता कि मैं 3 दिन और 3 रातें बोल सकता हूँ. उन्होंने कहा कि हम लोग छत पे सोते थे तो हम सारी रात बोलते थे, सारी रात बातें करते थे, कि नीचे जो एक अंकल सोते थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने शिकायत की इनकी वालदा से कि आपकी क्या ऊपर टीवी चलता रहता है, हर टाइम जो है कोई ना कोई बोलता रहता है. और उन्होंने कहा कि मैं इतना बोलने का शौकीन हूँ, इतना बोलता हूँ कि मेरी बेगम जो है ना वो मुझसे बचती है कि बस ये जो है ना शुरू ना हो जाए. और कहते कि कभी अगर मेरा दिल करे कि मैं बात करूँ तो मैं उनको, क्योंकि मीठा बहुत पसंद है, तो मैं उनसे कोई ना कोई मीठे की रेसिपी जो है ना उनको पूछता हूँ कि वो कैसे बनता है, और वो फिर फटाफट उठ के जो है ना बताने लग जाते हैं कि ऐसे बनता है. तो इस तरह से जो है ना ये गुफ्तगू का बहाना बना लेते हैं, और जो कि इनकी बेगम की इंटरेस्ट की भी होती है तो वो उनकी रेसिपी भी सुन लेते हैं. ऑलराइट जी, बहुत स्वीट सी बात थी, और अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप जो है वो बातें करने के इतने शौकीन हैं कि आप जो है ना अपनी बेगम की इंटरेस्ट की बात जो है ना वो निकाल लेते हैं रात को बात करने के लिए भी, किसी भी टाइम बात करने के लिए भी. और उनको भी शौक है, वो भी खानों की बातें कर लेती हैं, तो अच्छा एक बॉन्ड है.

0: All right, Jean, let's see. पहले कॉलर कौन है हमारे साथ 0-4-2-1-1-0-1-1 पर. Let's see. Hello, Assalamualaikum.
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रहे हैं?
1: खुरम बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से.
0: जी खुरम, कैसे हैं आप?
1: जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक ठाक?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. क्या कहना चाहेंगे जी, अच्छे लिसनर हैं आप.
1: अच्छा लिसनर होना जरूरी होता है.
0: अच्छा.
1: सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर किस तरह से आगे आप प्रोसीड करेंगे, किस तरह से उनको जवाब देंगे उस बारे में.
0: ठीक है,
1: तो बड़ा जरूरी है जी कि अच्छा लिसनर होना चाहिए.
0: नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान अपने ख्यालात में खो जाता है बातें सुनते सुनते.
1: नहीं, अपना ख्याल अगर बंदा ऐसा हो तो फिर ही ख्यालों में खो सकता है.
0: और अगर कोई कहानियां कर रहा हो तो फिर
1: उसमें जरूरी है ना कि देयर मस्ट बी समवन.
0: अच्छा,
1: लव्ड वन की बातें सुन के बंदा जो है ना अपनी बातों में खो जाए.
0: ठीक है.
1: अगर कोई बंदा भी ऐसा बैठा हो जिसको बस मुश्किल से सुनना हो तो बस फिर बंदा कहता है कि टाइम गुजरे जैसे मर्जी.
0: फिर आप कैसे करते हैं, बर्दाश्त करते हैं या बस एक्टिंग कर रहे होते हैं कि मैं सुन रहा हूँ?
1: बस सुन लेते हैं कभी, वो आवाज स्पीड मेरी ऐसी क्योंकि कस्टमर से इंटरेक्शन रहता है, तो बाद कस्टमर आते हैं वो अपने घरों की बातें लेकर बैठ जाते हैं, तो उस टाइम बंदा बस यही सोचता है किस तरह से इससे जान छुड़वाए, तो बस सुनना भी जरूरी है क्योंकि.
0: ठीक है,
1: ये जरूरी.
0: ठीक है, मतलब आपकी पार्ट ऑफ जॉब है ये, और उसकी वजह से आपको काफी प्रैक्टिस हो चुकी है सुनने की. अच्छे लिसनर हैं आप.
1: कस्टमर रिलेशनशिप है ना, तो उसमें फिर लोगों को सुनता है. बाद लोगों का ये होता है कि मतलब घर से कोई सुनने वाला नहीं होता, फिर वहां पे आके हमें सुना रहे होते हैं.
0: अच्छा, ये अच्छी बात है क्योंकि ना देखें आपकी जॉब नेचर इस तरह की है, बहुत कम लोग होते हैं जो सुनते हैं. बहुत सारे लोग जो है ना वो एक्सप्रेशन ऐसे बनाने लग जाते हैं कि आपने एक्चुअली भी कुछ पूछना होता है ना तो आप चुप कर जाते हैं कि अगला बंदा इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा है या उसके फेशियल एक्सप्रेशन तंग आने वाले हैं.
1: बहुत ज्यादा फील करते हैं, जैसे मेरे पास एक कस्टमर आते थे तो जैसे ही मेरे को एक्सटेंशन पे कोई बेल वगैरह बोलनी ना, साथ ही उन्होंने कहना अच्छा जी अल्लाह हाफिज़ में जा रहा
0: हूँ. Sensitive.
1: कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनको स्पेशल बहुत टेंशन चाहिए होती है. हाँ. मतलब वो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई बीच में इंटरवीन करे.
0: नहीं, मैंने अपने ऊपर भी ये चीज़ सोची ना, अभी जब आपने ये बात की तो मैंने भी सोचा कि मतलब अगर मैं भी किसी के पास कोई मसला लेकर जा रही हूँ, कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा अगर वो थोड़ी देर बाद मुंह बनाने लग जाएं या अच्छा अच्छा चले ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर आपकी बात बीच में ही रह जाती है और आप कहते हैं अगला सुनना ही नहीं चाह रहा तो मैं क्या बात करूँ.
1: जी जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. हमारी तो ड्यूटी थी लोगों की सुननी है और बस सुनते ही रहना है.
0: चले जी, ये भी अच्छी बात है, आप अपनी जो है ना जॉब बखूबी निभा रहे हैं और आप लोगों की सुनते हैं. समटाइम्स सुनने से ही ना अगला बंदा हल्का हो जाता है कि बस सुन लिया किसी ने.
1: आप बताएं आप ठीक ठाक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी.
1: यूनिवर्सिटी लेवल से आप रेडियो करती आ रही हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह.
1: देख लें,
0: हम लगता है पुराने लिसनर है.
1: नहीं, मैं पुराना लिसनर नहीं हूँ, मैं आपका नया लिसनर हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा बायोडाटा चेक किया था.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बच के रहना चाहिए मुझे. और जी बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का. अकबर खान हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं जी मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाले अगर अजनबी भी हों तो इसकी हमदर्दी दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेती है. बिल्कुल ठीक है जी, और समटाइम्स ऐसे गैर लोग जो हैं वो अपनों से ज़्यादा आपको जो है वो आगे बढ़ कर दिलासा देते हैं, और इसी तरह से ताल्लुकात भी मेरे ख्याल से इसी तरह से बनते हैं, इसी तरह से एडिशन होती है आपकी लाइफ में नए लोगों की, नए स्टेजेस पे नए फेजेस में नए लोग ऐड होते हैं. कराची से जी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जी. इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो हैं वो कहते हैं कि जी कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन जवाब होती है, अल्लाह पर यकीन रखें जो आपके हक़ में बेहतर होगा वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा, बस सब्र रखें, दुआ करते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह सबके दिलों को सुकून और ज़िंदगी को आसानियों से भर दें. आमीन आमीन जी.

और एक्चुअल रजत चौधरी ने कमेंट किया कि जी मेरा एक दोस्त है, आप भी जानती हैं एहसन खान, वो बड़ी अच्छी गुफ्तगु करते हैं, इनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि दिल करता है कि बस इनकी सुनते जाएं और आंखें बंद करके सो जाएं। ये अच्छी होती हैं या ये फिर नींद दिला देने वाली होती है? कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि आप कहते हैं अच्छा बस बोली जाओ मैं सोने लगा। तो क्या सीन है?

0: All right, Jay, another caller with us. Hello, assalamu alaikum.
1: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर रहा हूँ.
0: जी शहजाद साहब, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआएं माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छी बात, प्यारी बात.
0: बहुत
1: अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती रखे,
0: आमीन.
1: और बहुत बहुत दुआएं आपके साथ.
0: बहुत शुक्रिया जी. मुझे बताएं, आप अच्छा सुनते हैं, आप लिसनर अच्छे हैं
1: जी? जी तो आप बताने ना, अच्छे कौन होते आपसे बात करें जो आपसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कौन अच्छी बात कर रहा है. वैसे मैं किसी की बात बहुत एक दफा ना बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो बहुत लंबी स्टोरी ले गया.
0: अच्छा.
1: जब वो लंबी स्टोरी ले गया फिर मैं अपने ध्यान में बीच में लग गया ना, तो वो जब बात कर रहा है तो कह रहा है अब पता चला मैं क्या बात. मैं कह यार तुम्हारी बातों का मजा बड़ा आया पर समझ कुछ नहीं आई मुझे, क्या कह रहे हो?
0: ये बड़े मजे की लाइन है कि मजा बहुत आया लेकिन समझ कुछ नहीं आया.
1: इसी तरह ये बहुत ज्यादा कहानी आगे आगे हो, चलो थोड़ी सी बात हो ना वो समझ लग जाती है. जो बातें बातें करी जो फिर समझ भी नहीं लगती ये क्या कह रहा है. मैंने क्या आगे से बोल रहा है वो फिर मालूम नहीं पड़ता जी.
0: हाँ.
1: तो बात जो होनी चाहिए थोड़ी सी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए जिसका पता चल जाए कि हम क्या बात करें, अगला भी सुन ले शौक से.
0: ठीक है जी, मतलब
1: इतना होना चाहिए.
0: हाँ हाँ हाँ, टेंशन रहे बंदे की. ठीक है, मुख्तसर बात हो.
1: हाँ जी बिल्कुल जी. और माशाल्लाह बहुत, एक दफा ना पानी वाले जहाज में बहुत मतलब पानी शोर पड़ गया तो एक माई की ना पोटली जा पड़ी पड़ी, वो जब उसने एक आदमी ने छलांग लगाई वो उसको पकड़ लिया उस आदमी को बाहर निकाला ना, जब वो कहते तुमने बहुत नेकी काम किया तुम्हें ना इनाम दिया जाएगा.
0: अच्छा.
1: वो कहते है इनाम तो हम ले लेंगे, पहले ये बताओ हम वो पानी में धक्का किसने दिया था? वो पानी में धक्का किसने दिया है ये मुझे बताओ बात. तो इनाम तो हम ले लेंगे, तो ये बात है कि बात ये समझ लगे तो फिर बात होती है.
0: ठीक है जी, ठीक है.
1: बहुत बहुत मेहरबानी, सबको मेरा सलाम जी. बहुत अच्छा आपका शो,
0: बहुत शुक्रिया जी. ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़. ऑल राइट जी, इनकी बात हुई है ये है कि मुख्तसर बात हो और बात जो है वो अच्छी हो. अपने से छोटा हो ना कोई और कोई कहानी कर रहा हो तो हम उसको कह भी देते हैं कि भाई बात जो करनी है ना वो करो, कहानी ना करो. तो हम बड़ों को जो है ना समटाइम्स, या जो हम उम्र होते हैं कभी कभी आप ऐसे बैठे होते हैं जैसे उस्मान साहब ने कहा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे तलबा होते हैं, ये जो है इनके लिए बड़ा एक ये इस फेस से बहुत गुजर रहे होते हैं क्योंकि उनको सुननी पड़ती है. वो सुनते हैं, घर में भी सुनते हैं, टीचर्स की भी सुनते हैं. उनको सुनना उनका जो है ना एक वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है. वो उससे सीखते भी हैं, ज़ाहिर है वो उनकी एक तालीम का हिस्सा भी है कि उनको सुनना पड़ता है. तो वो एक अच्छे लिसनर होते हैं. और बिल्कुल जी, उसमें से समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उनके लिए भी लैक ऑफ, उनका भी ध्यान इधर उधर चला जाता है. वो भी समटाइम्स नहीं इतना गौर और फिक्र कर पाते, लेकिन स्टिल उनकी प्रैक्टिस जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा होती है. तो बिल्कुल ठीक बात है ये जी कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा होती है. लेकिन अभी तक जो मैंने क्रक्स निकाला है वो यही है कि जी अगर कोई कहानी कर रहा है तो आपने उसको कैसे जो है वो टालना है, और अगर कोई कहानी नहीं कर रहा और कोई बहुत अच्छी बात कर रहा है, जैसे रजा चौधरी ने कमेंट किया कि अगर कोई बहुत अच्छी बात कर रहा है तो फिर मैं अपना खाना पीना छोड़ के, अपनी सारी मसरूफियत छोड़ के जो है वो कोशिश करूँगा कि मैं उसकी बात को सुनूँ, अच्छे से सुनूँ, और फिर मैं उसकी बात का जवाब भी दूँ. और कभी कभी बातें इतनी अच्छी भी होती हैं कि आप उस गुफ्तगू को पूरा हफ्ता सोचते रहते. तो बिल्कुल, अगर आपने कोई अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने कोई अल्फाज अदा कर रहे हैं अपने मुँह से, तो कोशिश करें कि वो इतने अच्छे हों, इतनी मुख्तसर और इतनी पक्की और पुख्ता आपकी बात हो ना कि वो अगले के दिमाग में बैठ जाए और अगला सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या बात की है, और उसका दिल चाहे कि वो आपकी बात को सुने और उसके ऊपर जो है वो अपना एक रिएक्शन दे, आपसे बात करें, आपसे गुफ्तगू करें.

0: ऑल राइट जी, इसके अलावा उर्स लगा रहे हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जी आपका भी ज्वाइन करने का। ऑल राइट जी, एक और कॉलर, लेट्स सी कौन होते हैं हमारे साथ 04221000011 पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ऑल राइट जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं जी, दोबारा डायल कर सकते हैं 04221000011 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ऑन एयर कॉल्स का सिलसिला जारी है जी, इसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/fm1lahore के पेज पे आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि जी आप अच्छे लिसनर हैं या नहीं है, या सिर्फ एक्टिंग करते हैं और कभी कभी कोई सामने वाला कहानी करता है तो फिर आप क्या करते हैं। ऑलराइट जी, लेट्स सी हूज द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम नखा मम्मी मुन्नी साडी छोटी पे है ना। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: हां, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बे, अपने आप ऐसी मिठम मियां मिठू नहीं बनया जांदा कोई। अच्छा। कवे ना भी अच्छा बोलदा, कलर आके कवे कोई आर जी कवे तो फिर सवार आंदा।
0: ठीक है,
1: अभी कहिए जी मैं बड़ा चंगा, मैं बड़ा चंगा, मैं बड़ा चंगा। देखो जो कोई तारीफ करे ना ते हम ना खा फिर अच्छा बनदा।
0: बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है।
1: कहंदा पहलो तोलो ते फिर बोलो, गल कोई सोच समझे करिए ना, ते हर बंदा इंशाल्लाह प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा।
0: ठीक है, ठीक है जी।
1: वेखो असी हमने खा ताडा प्रोग्राम सुनी दा, कोई इथो मिलदा मकसद हुंदा साडा, ताडे भी आउंदा ते साडे भी सुनंदा, कोई गल एक भी साडे पल्ले पै गए सबक रखदे ने, एदा कोई मकसद है।
0: ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कोशिश तो यही होती है जी।
1: हां वेखो असी सारी दिहाड़ी यकीन करो वन वन दे नाल जुड़े रहिंदा, कोई सानू अच्छी गल मिल जाए ताडा भी मकसद पूरा है, सानू भी कोई फायदा हो।
0: अच्छी बात है जी, आप लोग बड़े अच्छे लिसनर हैं, मैं मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे लिसनर हैं।
1: नहीं मैं वैसे भी बर्फी भी बनाता हूँ ना।
0: हाँ,
1: क्यों जी, बर्फी बनाना मीठा हर बार मीठे के कोल रहना तो मीठा रहना ही ना।
0: इतना मीठा नहीं अच्छा होता।
1: नहीं वो उतना मीठा नहीं है, इतना ना मीठा अवे कोई खा जाए, इतना कौड़ा ना हो कहीं कोई सोच दे है। माशाल्लाह जिन्हें भी है साढ़े ना क्लब वाले रजा भाई असन खां है, सलीम है, बोधी जाट लतीफ मुगल है, असन खां असन खां वेखो लाहौर लाहौर आया है। ते मैं कहना साडा इन्ना क दिल खुश हो जाना जो साडे एक दूसरे की कॉल असि अपने आपस में भी मशवरा करी दा कॉल ते अच्छा बोलना कोई सानू यकीन करो। हमने कहा मेरी उम्र 55 साल है, मेनू इन्हों ने दसिया रजा ने सलीम ने ते बोलन दा।
0: कभी कभी जब आप अच्छा सुनते हैं ना तो फिर आप अच्छा बोलने भी लग जाते हैं खुद ही से।
1: बिल्कुल
0: ऐसा भी होता है।
1: हमने कहा बहुत सारिया दुआवाते सुनने वास्ते, जितो दिक्कत ताड़ी से ताड़ी आवाज वाली सलामती दुआ
0: बात करें कि आप अच्छे लिसनर हैं या नहीं है, या सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं, और एक्टिंग भी वैसे एक स्किल होती है न।

0: 8 0 4 2 1 1 0 1 1 पर लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। लेट सी जी नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हमना बेटा मोहम्मद तारिक
0: जी। तारिक साहब कैसे आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, दुआएं आपके लिए और करम नवजात पाक का आप सुनाए सब खैर।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो हमना बेटा मैं मिसाल ये दूंगा
0: जी जी
1: के जो अच्छे लिसनर होते हैं ना वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए भी प्रोग्राम को अच्छे तरीके से सुन रहे होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जो सही तरीके से सुन नहीं पाता वो सही तरीके से बात कर नहीं पाता।
0: ठीक कह रहे हैं।
1: हाँ, हम अगर अच्छे तरीके से सुनते हैं ना तो अच्छे तरीके से मौजू पर आकर बात भी कर लेते हैं।
0: बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक।
1: और अगर हम सुनते नहीं है ना जब
0: जी जी
1: तो फिर हम ऑन ईयर कॉल मिला के कहते हैं आज का मौजू की सी
0: जरा दोबारा बता देगा। ठीक है,
1: सुन क्या रहे हैं हम।
0: बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। ये तो टेस्ट हो गया है सारे लिसनर्स का।
1: हम अगर सुने ही नहीं रहे तो हमें क्या पता होगा मौजू क्या है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: मौजू का तभी पूछते हैं ना कि हम सुन नहीं रहे होते और तवज्जो नहीं होती।
0: तवज्जो नहीं होती। ठीक है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: और जिंदगी में बेटा आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम तवज्जो और बाहमी तावन मिलजुल कर चलने से ही इंसान कामयाबी की तरफ गामजन रह सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की।
1: हाँ, और कामयाब और अच्छी जिंदगी के लिए सबसे हमें ईमान और इत्मीनान मजबूत होना चाहिए। अपना कॉन्फिडेंस जो है ना उसे मजबूत रखें
0: जी।
1: और सुने लाजमी, क्योंकि जब तक आप सुन नहीं सकेंगे ना अच्छी तरह फिर उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसकी बात का जवाब भी नहीं दे पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि मैं ऐसे मिसाल दूंगा हम ना बेटा
0: जी जी
1: कि जिंदगी में जो तजर्बा है ना
0: जी
1: वो इंसान को गलत फैसलों से बचाता है।
0: बिल्कुल।
1: और तजर्बा जो है गलत फैसलों से ही हासिल होता
0: है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है।
1: हाँ, तो तजर्बा जो है वो नाकामी है और मायूसी जो है वो गुनाह है। नाकामी से तजर्बा सीखना चाहिए, मायूस नहीं होना
0: चाहिए। बहुत अच्छी बात की बहुत अच्छी बात की।
1: आपकी पूरी मैनेजमेंट को सल्यूट और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। अल्लाह ने के बहान पे सदा जीवे
0: सोना पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी तारिक साहब कॉल करने का, ख्याल रखिएगा। और राइट जी, तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप अगर किसी की बात तो बगौर सुन ही नहीं रहे, गौर से सुन ही नहीं रहे, और आपने कोई ऐसी उसने बात कही हो जिसमें उसने आपसे कोई हामी भरवा दी हो और आपने हाँ कर दी हो, और फिर बाद में आप सोचते हैं कि ये मैंने कब कहा या ये मैंने हामी कब भरी या ये बात कब हुई थी। तो इसलिए जो है ना गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि अगला बंदा वाकई कहानी कर रहा है और बस वो फनकारियाँ अपनी दिखा रहा है, तो वहाँ पर आपने किस तरह से अगले बंदे को रोकना है, किस तरह से उसको डाइवर्ट करना है, उस स्टोरी को डाइवर्ट करना है, उसको पॉज, उसके पॉज आने पर आपने क्वेश्चन चेंज करना है, या आपने उसको ही उसकी बातों में से कोई सवाल करके जो है ना उसको पकड़ना है कि बस अब ये जो है ना अब अपनी कहानी स्टॉप करें, तो ये तरीक़ेकार आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर जहाँ कोई अच्छी सीरियस और इस तरह की गुफ्तगू हो रही है वहाँ ज़रूर जो है वो गौर से सुना करें। एक अच्छा लिसनर जो है वो अच्छा बोल भी सकता है और अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकता है, अच्छा जवाब भी दे सकता है। ऑलराइट जी, कोशिश करते हैं कि एक कॉल हम और शामिल कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, मैं हसन खान
0: जी। हसन कैसे हैं आप?
2: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और शो आपका बहुत ही जबरदस्त है।
0: बहुत शुक्रिया जी।
2: और सुनने सुनाने की बातें हो रही हैं
0: जी जी,
2: कोशिश करनी चाहिए जहाँ से अच्छी बात मिल रही हो तो सुननी चाहिए, क्योंकि जो कहानी होती है वो तो बना नहीं सुन सकता, क्योंकि वो ही कहानी हमने कोई 10-20 दफा पहले सुनी होती है।
0: हाँ, ठीक है।
2: अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो फिर तो आप सुन लेंगे।
0: हाँ।
2: गुजरेंगे फिर वही कहानी फिर वही कहानी।
0: तो कुछ लोगों को आदत होती है ना रिपीट करने की, जब उनको कुछ सुनने वाला मिल जाता है तो वो फिर पिछली बातें फिर दोबारा हर महफिल में वही बात
2: फिर दोबारा से। हाँ, कहते हैं ना कोई چائے بھی ساتھ پلاتے اور باتیں بھی سناتے ہیں. چائے بناو سی صاف بندہ آیا ہوا ہے پھر ساتھ میں پھر بندے کو سننی پڑتی ہے جب تک چائے پکنے میں بندے کے کان پک جاتے ہیں.
0: اب بندہ کیا کرے اگر بندہ چائے کا شوقین ہو تو اس کو بیٹھنا بھی پڑتا ہے. اور چائے تیار بھی ہو رہی ہو, آپ انکار بھی نہ کر پا رہے ہو.
2: میں کوشش یہ کرتا ہوں ٹاپک چینج کرو, ٹاپک چینج ہو جائے نا تھوڑا سا تو پھر بندے کو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ کہانی ہم نے 20 دفعہ پہلے سنی ہوئی ہے.
0: ٹھیک ہے,
2: تو سب لوگوں کو میرا سلام. رضا بھائی کی کال نہیں ملی تو
0: نہیں, ان کی آفر کال مل گئی تھی.
2: آفر کال تو میری
0: ہونے کا مزہ نہیں آتا. چلے کوئی بات نہیں جی, انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ اچھا بولتے ہیں اور آپ کی بات جو ہے وہ سنتے بھی ہیں.
2: بس وہ میری سنتے ہیں اور تو کسی کی نہیں.
0: چلے اچھی بات ہے, اچھی بات ہے.
2: ہمیں کریڈٹ ہے کہ وہ ہماری بات سن لیتے ہیں اور ہماری بات پہ عمل بھی کر لیتے ہیں, تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لسنر کا اتنا بڑا نام ہے اور سب کچھ ہے اور وہ میری بات سنتا ہے, میری بات کو اسے اچھی لگتی ہے, تو میرے لیے فخر کی بات ہے.
0: چلے اچھی بات ہے, اچھی بات.
2: سننے والوں کو میرا سلام, اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اور رائٹ جی, احسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً آپ اچھی گفتگو کرتے ہوں گے تبھی آپ کی بات جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہے اور مانی بھی جاتی ہے. اور رائٹ جی, ود دا لاسٹ ٹریک ذیشان علی کی آواز میں.
3: مینوں چھڈ کے کلی نو تر چلیاں,
0: ایسے میں بھی آپ لوگوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. اٹس ٹائم 58 PM آن دا ڈائل, جانے کا وقت ہوا. آلرائٹ جی, آج کا سوال یہی تھا کہ آپ ایک اچھے لسنر ہیں یا نہیں ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے اچھے لسنر ہیں, لیکن 58 PM آن دا ڈائل, جانے کا وقت ہوا. آلرائٹ جی, آج کا سوال یہی تھا کہ آپ ایک اچھے

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

से वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

चलो चले, एक दो, अब तीन के बाद साहिल कह दीजिए, तीन साहिल।

0: हर गाना एक कहानी बताता है, आपकी कहानी क्या है हमें बताइए। बस FM 101 पे कॉल कीजिए और कहानी बताना शुरू कर दीजिए।
1: यार आप लोगों ने शोर काम नहीं करना, मेरा रेडियो सुनने का टाइम हो गया, बस कर दो, मैं जा रहा हूँ बाहर, मजाक बना के रखा है, इतना शोर रेडियो कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, मैं तो आ गया हूँ गाड़ी में।
0: अब चाहे सबके साथ सुने या अकेले में, रेडियो तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके फेवरेट शोज यहीं पर तो लगते हैं, आपके फेवरेट आर्टिस्ट यहीं पर तो आते हैं, तो बस सुनते रहिए FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। अब इश्क किया है तो निभाना पड़ेगा, रेडियो पे एक बार फिर से आना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। गम चाहे जितना भी ज्यादा हो, पर बांटने के लिए रेडियो तो आना पड़ेगा। अभी लगाइए FM 101 और जुड़ जाइए हमारे साथ गम बांटने के लिए।
2: अरे यार ये रेडियो क्यों नहीं लग रहा?
3: अरे भाई दोबारा ट्राई करो।
2: अरे पता नहीं सिग्नल इतने कम क्यों है?
4: बोला का यार वो जरा 101 लगाओ।
2: अरे वही लगा रहा हूँ, लो, लो, लो, लो, लग गया।
0: बस किसी को पाने की कोशिश कीजिए तो वो मिल जाता है। अब तो जो भी रेडियो पे आता है मुस्कुरा के आता है। आइए मिलके मुस्कुराते हैं FM 101 के साथ।

चाहत में क्या मजबूरी और इश्क में क्या मजबूरी, चाहत में क्या दूरी और चाहत में क्या मजबूरी, और जब इश्क हो इंसान को किसी चीज़ के साथ तो फिर क्या मजबूरी। इंसान को जब किसी भी शय के साथ इश्क होता है तो वो सारी मजबूरियाँ छोड़ देता है, और उसको मजबूरियाँ फिर मजबूरियाँ नहीं लगती, तो उसको परेशानियाँ परेशानियाँ नहीं लगती अगर इश्क हो किसी चीज़ के साथ तो। बस इश्क को बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है, और अगर आप किसी भी शय के साथ इश्क करते हैं तो वो आपको मिलती ज़रूर है। देखिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जाती है, और आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप मोटिवेशन लेते हैं, जिनसे आप एनर्जीज लेते हैं, और जिनको देख के जिनको मिल के आपको पता चलता है कि हाँ ये भी इश्क करते हैं, और ऐसा इश्क करते हैं कि उसमें किसी मजबूरी को नहीं देखते, उसमें किसी परेशानी को नहीं देखते, उसमें किसी मुसीबत को नहीं देखते। और अगर आप किसी शय में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, किसी शय में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए इश्क बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उस कामयाबी के साथ इश्क करना बड़ा ज़रूरी है।

तो जिस दूर देहात वाले शख्स की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि जो आता है किसी दूर देहात से जिसका कोई एक्सपोजर नहीं होता, और वो जब आपकी उस मैदान में शामिल होता है जिस मैदान में बहुत सारे एक्सपोजर वाले लोग होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज वाले लोग होते हैं, उनसे बहुत कहीं आगे निकल जाता है, उसके पीछे एक ही वजह होती है, और वो वजह ये होती है कि उसके अंदर रब वो आग पैदा करता है आगे निकल जाने की, क्योंकि उसको कदर होती है उस कामयाबी की, क्योंकि रब भी उसको ही अता करता है कि जिसको कदर हो, जो शुक्र अदा कर सके।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर वो आग नहीं है तो रब से दुआ करें कि रब आपके अंदर वो आग पैदा करे कि आप कामयाबी हासिल कर सकें, आप वो अपनी मंजिल हासिल कर सकें, और इस इश्क के लिए आपके अंदर वो आग पैदा करे कि जो आपको इश्क की इंतहा तक ले जाए, आपके अंदर वो इश्क पैदा करे। दूसरी बात जो मैं आपसे कर रहा था कि आपको रब ताला जब अता करता है तो कहीं से भी चश्मा फूट पड़ता है, और जहाँ से चश्मा फूटता है आपने वहाँ से तसव्वुर नहीं किया होता, उस रेगिस्तान से फूट पड़ता है जिस रेगिस्तान के ऊपर कभी आपने सोचा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर से भी मौजज़ा ज़रूर होता है, लेकिन उस मौजज़े का सबब ज़रूर होता है, क्योंकि उसने कहीं और मेहनत कर रखी होती है, किसी और जगह अपनी एनर्जीज लगा रखी होती हैं, और जो वो असबाब हैं उन असबाबों के लिए तमाम तर जो इकदाम हैं वो कर रखे होते हैं। तो तब रब अता करता है उस रेगिस्तान से, उस चश्मे से उसको वो नूर अता करता है जिसका वो तसव्वुर कर रहा होता है, जिसको वो चाह रहा होता है। ये सारी कहानी करने का मकसद ये है जी कि मेरी मुलाकात जो है वो, मेरी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे मैं इंस्पायरेशन लेता हूँ, और एक शख्स से मैं इंस्पायरेशन ले रहा हूँ, और ये इंस्पायरेशन ले रहा हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने साथ और अपने साथ होने वाली चीज़ों के साथ ऐसे लड़ाई लड़ रहा है कि जो शायद अगर मैं हूँ या आप हों या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों कि अगर उसके ऊपर बीत रही होती तो शायद वो सब कुछ ना कर रहा होता जो हमें, हमारे लिए बड़ी एक आम सी चीज़ है लेकिन उसके लिए बहुत ख़ास है। और मैं कहता हूँ कि उसके अंदर जो वो आग मैंने देखी है, वो आग उसे बहुत आगे लेकर जाएगी, और इतना आगे लेकर जाएगी कि जब उसे वो सब कुछ मिल जाएगा तो फिर हम देख के उसे कहेंगे कि हाय इसको मिल गया, अरे इसको कैसे मिल गया। इश्क मर्ज़े ला दवा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई दवा असर नहीं करती, वो सारी दवाइयां जो उसके इश्क को मारना चाहती हैं उन सारी दवाइयों को कहता है अरे भाई मेरे अंदर जो आग है ना, मेरे अंदर जो इश्क है ना, उस इश्क के ऊपर ये सारे एंटीडोट्स ने कोई असर नहीं करना। तो रब से दुआ है कि रब आपके अंदर वो इश्क पैदा करे अपनी कामयाबी के लिए, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए इश्क का होना बड़ा जरूरी है, और रब से दुआ किया करें कि रब, ऐ रब जो असबाब तू चाहता है या जो असबाब तूने बनाए हैं उन असबाब के लिए हमारे अंदर इश्क पैदा कर, उस उन असबाबों को लाने के लिए हमारे अंदर वो आग पैदा कर, और कामयाबी के लिए आग का होना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ कि कामयाबी के लिए एक आग का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि आपनी ज़िंदगी में अगर आप अपनी गुर्बत से तंग हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप एक दौलतमंद शख्स बन जाएं, आप ज़िंदगी की तमाम तर लग्जोरियस जो चीज़ें हैं वो हासिल कर सकें, आपने अगर गाड़ी हासिल करनी है, बंगला हासिल करना है, आपने अच्छी जगह कहीं शादी करनी है, आपने अच्छा कैरियर अपने बच्चों के लिए बिल्डअप करना है, और उसके लिए डेफिनेटली आपको दौलत चाहिए, और अगर आप दौलत हासिल करना चाहते हैं तो उस दौलत को हासिल करने के लिए आपको असबाब पैदा करने पड़ेंगे, और इन असबाबों के लिए आपको कभी कहीं ना कहीं मेहनत और इश्क बड़ा लाजमी है कि उन असबाबों के साथ आपका इश्क हो, उस काम के साथ जो असबाब रब ने दौलत हासिल करने के लिए जो एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है उस क्राइटेरिया को फुलफिल आप कर रहे हो, चाहे आप मर रहे हो, चाहे आप बीमार हैं, चाहे जिस भी हालत में हैं, चाहे आप दुखी हैं, चाहे आपके पास आपके बाजू नहीं हैं, आपकी टांगे नहीं हैं, आपके पास जबान नहीं है, आपके पास सेंसेस नहीं, आप देख नहीं पाते, कोई भी शायद इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जैसे, आप जैसे, जिनको हिदायत ज़रूरत है और जो हिदायत के मतलाशी हैं, जो हिदायत चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो रब के करीब हो जाएं, रब की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, तो रब के पास होने के लिए, रब की कुर्बत हासिल करने के लिए, उसका नूर हासिल करने के लिए आपको उन असबाबों को पैदा करना बड़ा ज़रूरी है जिसके थ्रू अल्लाह ताला आपको अता करता है अपना नूर और अपनी तजल्लियात और अपनी बरकतें आपके ऊपर निछावर करता है। उन असबाबों के लिए आपने इश्क करना है। अच्छा, ये इश्क भी बड़ी मजेदार चीज है, ये आपको करने से नहीं होती, ये बस हो जाती है, ये भी रब पैदा करता है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपके अंदर जो है वो इश्क आ जाएगा या आप किसी से इश्क करना चाहें तो आपको इश्क हो जाएगा, तो इश्क नहीं होता भाई, चाहत जरूर होती है, और चाहत हम सभी को होती है कि हमें ये मिल जाए, वो चाहत है, लेकिन उसको हासिल करने का जो इश्क है ना,
वो रब किसी किसी के अंदर पैदा करता है। तो अगर आपके अंदर इश्क है आपकी कामयाबी का, या जो भी मंजिल आपकी जिंदगी में है उसको हासिल करने के लिए आपके अंदर इश्क है, तो आप यकीन जानिए दुनिया का कोई भी मुसब्बिबुल असबाब रब ही है। लेकिन अगर आपके पास जो भी असबाब अगर आपके पास हैं और अगर आपके पास इश्क नहीं है तो आपको कभी हासिल नहीं होगा। ये आप लिख लें अपने पास, ये अपनी कुंडली से बात बांध लें कि अगर आपके पास उस चीज़ का इश्क नहीं है जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, तो जितने मर्जी आप असबाब पैदा कर लें, जितनी मर्जी चीज़ें आपके पास आ जाएं, जितने मर्जी आपके पास इंग्रेडिएंट्स हो जाएं, वो डिश तब तक नहीं बननी जब तक आपको उसको बनाने के लिए आपके अंदर इश्क नहीं है। ये कहानी सही। अच्छा, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों को तो बिना मांगे बिना चाहत किए और बिना सोचे कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे आप जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं उनकी स्टोरीज आप सुने तो वो कहते हैं यार हम तो ये बनना ही नहीं चाहते थे, हमें तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम ये बनेंगे और हम बन गए ऐसा और हमारी जिंदगी में ये हो गया। तो आप सोचने पड़ गए होंगे कि यार ये कैसे हो गया कि हमने इश्क भी नहीं किया, हमने असबाब भी पैदा नहीं किए, फिर भी हमें मिल गया। इसका जवाब यही है कि हम कहीं और इश्क कर रहे होते हैं और हमें बदले में कुछ और मिल जाता है। इश्क कहीं और किया और अता कुछ और हो गया, लेकिन जो आपको अता हुआ है ना उसके लिए इश्क करना बड़ा लाजिम था, चाहे इससे चाहे उससे। कि किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए और उसको समझने के लिए या उसको अपने पास रखने के लिए या उसकी जो तपस्या है उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर इश्क का होना बड़ा जरूरी है। सो इश्क लाजम मलजूम है। तो मेरे दोस्तों जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हो और जिन जिन के अंदर इश्क है किसी चीज को हासिल करने के लिए, उस इश्क के पीछे लगे रहिए, उस इश्क की आंख को सींचते रहिए, उसको आप कोयला देते रहिए, उसको आप जरूर सुलगाते रहिए, कहीं ना कहीं से चश्मा जरूर फूटेगा।

मेरे पसे पर्दा जो शख्सियत है जिसको देख के मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि उस शख्सियत के अंदर अल्लाह ने वो इश्क पैदा किया, वो मेहनत का वो जज्बा पैदा किया कि जिसने कोई परवाह नहीं की कि मेरी ज़िंदगी के साथ क्या है, मुझे क्या क्या मसाइल हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं, मेरी सेहत है, मेरी फैमिली है, मेरे प्रॉब्लम्स हैं, बेतहाशे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ वो लड़ी जा रहा है, लड़ी जा रहा है। और हम सभी लड़ रहे होते हैं, हम सबकी ज़िंदगियों में कहानियाँ होती हैं। कुछ लोग काफ़ी शिद्दत से लड़ रहे होते हैं और कुछ कम शिद्दत से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो जितनी शिद्दत से लड़ता है ना उसको उतना ही मुयस्सर आता है, क्योंकि रब चाहता है कि जब मैं किसी को इनायत करूं तो जब भी मैं उसको इनायत करूं और जब वो उसको मिल जाए तो वो उसकी चाशनी को महसूस कर सके। और अगर आपकी जबान पहले से कड़वी नहीं है ना तो चाशनी आपको चाशनी नहीं लगती। प्यास बुझाने का मजा तभी आता है जब आप प्यासे होते हैं, वरना वो मशरूब, वो पानी या वो कुछ भी है जिसको आप लज्जत के लिए पी रहे हैं, तो वो लज्जत आपको तभी महसूस होती है जब आप प्यासे होते हैं। वो प्यासापन अगर आपके अंदर नहीं है तो उसकी लज्जत आपके लिए बेकार होती है। बेकारी के साथ साथ वो आपकी सेहत के लिए मुजरे सेहत होती है। तो मैं कहता हूँ जी कि कुछ भी आपको अगर मिल गया है, मुयस्सर है, रब की कोई भी नेमत आपने आपको मिली है, उसके लिए भूख का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप भूखे नहीं हैं तो फिर आपको खाना भी अफादियत नहीं देता।

इसकी मिसाल भी कुछ ऐसे हैं कि अगर किसी के पास साइकिल नहीं है और उसको अगर मोटरसाइकिल मिल जाती है तो उसकी खुशी की इंतहा इतनी है कि अगर किसी के पास लैम्बरगिनी है और उसको अगर आप जहाज़ दे देते हैं तो शायद उस जहाज़ की खुशी उसको इतनी ना हो जितनी उस साइकिल वाले को मोटरसाइकिल मिलने पे खुशी होगी।

मनोमय इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं जी। आज के भी मुझे कहते हैं और आज मैं आपके साथ वो बातें कर रहा हूँ जो मैंने महसूस की हैं पिछले कुछ एक हफ्ते में, और मैं आँख मचोली के थ्रू आपके साथ वो बातें पहुँचा रहा हूँ, कुछ डायरेक्टली नहीं पहुँचा रहा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद कि आप समझ रहे हैं, मेरी समझ है कि शायद आप समझ रहे हैं।

प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। 051-111-0000-101 है रابطے का नंबर। फेसबुक के ऊपर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाना आपके नाम करते हैं, वापस आते हैं मेरे साथ रहिएगा, मुझे आज के भी बुलाते हैं।

जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफा फिर खुश आमदीद प्रोग्राम वन वन इंटरनेशनल। आज ये भी आपके साथ और आपका साथ मेरे साथ। एक बजने को बाकी है जनाब 15 मिनट और 12:44 हुए चाहते हैं। इस्लामाबाद के स्टूडियो है, बिल्कुल बराह रास्त आप सुन रहे हैं। अब आज मैं काफी लंबा बोल गया ना है। ओके जनाब, वापस लेकर आते हैं आपको। अच्छा, एक और चीज आपने सीखनी है और वो ये सीखनी है कि आपने ये नहीं समझना और ये नहीं तसव्वुर करना कि चश्मा यहाँ से फूटेगा है? ये बड़ा जरूरी है। मैं शुरू में बात कर रहा था आपके साथ कि जो चश्मा है ना, ये कहीं से भी फूट सकता है। बस आपने कोशिश करते रहना है कि डिगिंग करते रहना है, आपने पानी की तलाश में रहना है, आपने उस कामयाबी की तलाश में रहना है। बस आपने सिर्फ इतना करना है। चश्मा कहाँ से फूटेगा, वो जगह कहाँ से होगी और वो रब कहाँ से इनायत करेगा, कितना इनायत करेगा, ये उसका फैसला है भाई, आपका नहीं है, मेरा नहीं है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारी राय होती है कि यार ये तो बहुत गुनहगार हैं, या तो ये तो बहुत ही जो है वो हम तो इनसे बहुत अच्छे हैं, या हम नहीं भी अच्छे तो ये अच्छे नहीं हैं। आपको नहीं मालूम पड़ता कि इसके पास क्या है। वो है, वो कुछ होता है उन लोगों के पास के जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके रंग हैं। वो जानता है कि किसको कहाँ रखना है, क्योंकि उसने अपनी कायनात को चलाना है और अपनी कायनात को चलाने में आपको उसने कहाँ किस पुर्जे के तौर पे इस्तेमाल करना है, ये आप और मैं नहीं जानते। हिदायत कहीं से भी आ जाती है, कामयाबी कहीं से भी मिल जाती है। और एक और चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की पिछले एक हफ्ते में, एक दिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि इस कायनात के अंदर एक छोटी सी चीज, बिल्कुल एक माइन्यूट सी बारीक सी चीज, जिसके ऊपर अगर आप गौर करना शुरू कर दें तो आपको पूरी कायनात उसके अंदर मिल सकती है। लास्ट फ्राइडे के लिए मेरी तरफ से आपके लिए जी सॉरी कि मैं आ नहीं सका, और लास्ट फ्राइडे को ही वो बात और वो दिन था कि जिसमें मुझे ये राज मिला कि इंसान को जब हिदायत मिलती है, इंसान को जब कुछ मिल रहा होता है, जब वो हासिल उसको जिसके लिए वो काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से या शायद पूरी ज़िंदगी के लिए उस हासिल के पीछे घूम रहा होता है, और उसको जब हासिल होता है तो ऐसी जगह से हो जाता है जहाँ से उसने कभी तसव्वुर किया ही नहीं होता। ऐसा एक वाकया मैंने देखा और ऐसी एक बात हुई मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मैं मनोअन आपके साथ शेयर तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको बातों में लपेट के आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन मैंने देखा कि एक ऐसी जगह जहाँ से कभी हिदायत आपने तसव्वुर भी ना किया हो कि यहाँ से हिदायत मिलनी है, वहाँ से आपको हिदायत मिल जाती है, या शायद आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता कि यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं, वहां से कोई ऐसा आपको मिल जाता है जिसको देख के आप कहते हैं यार ये तो रब का बंदा है, ये रब की बंदी है। जहां जिधर रब ने कहा ना कि मैं तुम्हें नजर आऊंगा, अगर तुम ऊपर देखोगे तो मैं तुम्हें नजर आऊंगा, अगर तुम अपने नीचे देखोगे तो तुम्हें नजर आऊंगा, दाएं देखोगे तो नजर आऊंगा, बाएं देखोगे तो नजर आऊंगा, वाकई वो रब हर जगह मौजूद है और वो आपको नजर आएगा। और एक छोटी सी चीज के अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके सामने एक पत्थर पड़ा है, अगर आपको वो बिनाई अता कर देना कि अपना आप अगर वो आपको दिखाना चाहे, तो आपको उस पत्थर के अंदर भी रब नजर आना शुरू हो जाएगा। यकीन जानिए, इस कायनात के अंदर जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे और अगर आपको रब वो बसारत अता कर दे कि जहां से वो आपको दिखाए कि हाँ मैं हूं, मैं मौजूद हूं, तो वो बसारत अगर आपको मिल जाए ना, तो आप उसको महसूस करना शुरू कर देते हैं।

मैं जो महसूस कर रहा हूँ शायद कि मैं आपको लफ्जों में बयान ना कर पाऊँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि शायद कि आप मेरी इन बातों से उसको महसूस कर सके जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। और अब कहता है कि मैं तेरी शाहरख से भी ज्यादा करीब हूँ। तो मैं उस रब की कसम खा के कहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत नहीं कहता, वो आपकी शाहरख से भी ज्यादा करीब है। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, जो आपकी समातों में गिर रही है, ये आवाज अगर रब आपको वो बसारत अता कर दे या रब आपको वो तजल्ली दिखा दे, तो आपको इस आवाज के अंदर भी आपको हिदायत मिल सकती है, जिस हिदायत के आप मतलाशी शायद कहीं और हों। अगर आप बाहर कहीं छत के ऊपर बैठे हैं और चांद सितारे देख रहे हैं, तो उन चांद सितारों को अगर आप देखते रहें, तो शायद के रब आपको उन चांद सितारों में भी अपनी तजल्ली दिखा दे। बस देखने वाली रब वो बसारत अता कर दे, बस रब से दुआ है कि रब ताला वो बसारत अता कर दे कि जिससे वो अपना आप आपको दिखा सके और आपको बता सके, आपके अंदर से वो आवाज आपको दिला सके कि हाँ तुमने करना क्या है, जिंदगी में तुम्हें चाहिए क्या, और तुम किसके पीछे हो, और क्या किस चीज के मतलाशी हो, और तुम्हें देना क्या है, मैंने तुम्हें कहाँ रखना है, मैंने तुम्हें किस लिए पैदा किया है, तुमसे क्या काम लेना है, मैंने ये जो कायनात है इसमें अगर तुम आए हो तो इसमें कहाँ तुम्हें मैंने रखना है, क्या काम तुमसे मैंने लेना है। और अगर हमें मालूम हो जाए ना कि मुझसे रब ने क्या काम लेना है, तो हमें फिर मज़ा आने लगता है वो काम करके, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हमारा परवरदिगार हमसे ये चाहता है कि हम ये करें। फिर हम किरची किरची नहीं होते, फिर हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि रब ने हमें इसलिए पैदा किया।

ओके जनाब, फेसबुक पे मेरे साथ बहुत सारे दोस्त इकट्ठे हो चुके हैं। मोहम्मद अख्तर खोकर मेरे साथ हैं, सिदरा कुरैशी मेरे साथ हैं। फैसल अब्बास मेरे साथ हैं, तायर अजीज हैं, रावलपिंडी से सुन रहे हैं। वाह जी, मिसेस सईद कुरैशी आज मेरे साथ शामिल हाल हैं और कहती हैं कि खुश आमदीद खुर्मी बच्चे और सदा सलामत रहें। शानदार पोस्ट हैं, बहुत सारे फूल भेजे हैं, एक गुलाबी है, एक पीला है, एक सफ़ेद है, फिर एक गुलाबी है, फिर एक हल्का गुलाबी है, फिर सुर्ख है। और कहती हैं आप सबको इन फूलों भरा सलाम। अस्सलामुअलैकुम। कहती हैं कि लाइट गई भी थी और मैं जाग रही थी इसलिए, और पोस्ट पे नज़र पड़ी तो रेडियो ऑन कर लिया। थैंक यू मिसेस सही, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हीरा फातिमा मेरे साथ हैं और कहती हैं कि नहीं हीरा, कुछ ऐसी बातें नहीं हो रही, वे बस अपनी मन की बातें हो रही हैं। हानिया बतूल मेरे साथ हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, सलाम कह रही हैं। साइमा तबस्सुम है मेरे साथ, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम खुर्रम बेग साहब और पाकिस्तान रेडियो के तमाम प्यारे सामीन। मैं नवाज़ुश अली तबस्सुम पेरिस फ्रांस से आपका खूबसूरत प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अच्छा जी, साइमा तबस्सुम नहीं है। और कहते हैं जी कि आप सबको दिल की गहराइयों से मोहब्बत भरा सलाम और बहुत सी दुआएँ। अल्लाह पाक खुर्रम बेग साहब आपको हमेशा खुश और खुर्रम और सलामत रखे और तमाम सामीन के घरों की खुशियाँ सुकून सेहत और मोहब्बत से भर दे। जो जहाँ भी है रब उसकी हिफाजत करे, उसको ईमान में रखे और हर जायज दुआ कबूल हो। वेरी नाइस, बहुत सारी मोहब्बतें और बहुत सारी दुआएं हमने भेजी हैं। और इसके साथ साथ आप सभी दोस्तों का शुक्रिया जिन लोगों ने फेसबुक पे अभी मुझे ज्वाइन किया जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए।

0: 0501111001 is the dialing number, or 0519205540. हाँ, 0191 जो इस्लामाबाद का कोड है, और 9205540 ये भी आप डायल करेंगे तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे जी। कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत अच्छी बात, आपकी फिर कॉल लग गई। रिमशा कौन बात कर रही है?
1: किरण फ्रॉम लाहौर।
0: किरण लाहौर से जी। किरण फरमाइए, क्या कहना चाहती थी आप?
1: आपने बड़ी अच्छी तस्वीर की है, जो मुश्किल अल्फाज से जो आपने इतने आसान से बयान कर दिए, तो बड़ी खूबसूरत बातें थी।
0: नहीं, बहुत मुश्किल से बयान किए, मैं काफी लपेट रहा था बातों को और काफी संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि
1: ये बड़ी मुश्किल आपने,
0: क्योंकि ये जो मौजू है ना, ये बहुत सेंसिटिव है और ये ऐसा मौजू है कि जिसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको आंखें मोड़नी पड़ती हैं। आपने आंखें बंद करके सुना है या आंखें खोल के सुना? अच्छा, आंखें आपने खोल के सुना। चलें अगर, चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये समझ में आई हैं तो रब ताला आपको भी अपना नूर अता करे, दुआ है आपके लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम
2: रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन है, कहां से?
2: मैं बात कर रही हूं बेरियन प्लेस।
0: अरे सायरा, कहाँ गायब हैं आप इतने अरसे से? आप बहुत अरसा हो गया कि आपको नहीं सुना हमने। क्या मसरूफियत होती है, आप हमें भी बताएं आपकी मसरूफियत।
2: मैं दो तीन बार आई हूँ, लेकिन एक बार मेरी आपसे बात हुई थी, मैं यहाँ नहीं थी।
0: अच्छा, कहाँ थी आप?
2: आउट ऑफ कंट्री।
0: ओके, सो आप, हाँ यस, आपने बताया था कि आप आती जाती रहती हैं।
2: क्या कमाल के आपने गुफ्तगू की है, अल्लाह करे हम सब कुछ समझ आ जाए। समझ सके, समझ आ जाए जिस जात के लिए आपने कहा है। तो अगर हम लोग ये सब समझ ले और कोशिश करें तो खुदा ताला से तो बहुत ज्यादा माली आसानियां पैदा करता है।
0: बिल्कुल, बस मैं ये कहता हूँ सायरा के हमें बस अपने लिए दुआ करनी चाहिए कि रब हमें समझ अता करे। वो समझ भी वो अता करता है, हमारी क्या औकात है कि हम समझें किसी को। अदा वो करवाता है, समझाता वो है, और वो जहाँ चाहता है ना वहां रखता है।
2: वो जो करता है वो बेहतर करता है।
0: बिल्कुल,
2: हम सोच भी नहीं सकते जो उसकी रजा होती है, तो उसकी रजा पे अल्लाह करे हम राजी रहे।
0: बेशक बेशक बेशक,
2: खुदा ऐसी तौफीक सबको दे।
0: अच्छा सारा, मजे की बात बताऊं, राजी भी वही। बिल्कुल,
2: हम सोच भी नहीं सकते जो उसकी रजा होती है, तो उसकी रजा पे अल्लाह करे हम राजी रहे।
0: बेशक बेशक बेशक,
2: खुदा ऐसी तौफीक सबको दे।

0: कह रहे हैं, बोले आप क्या कह रहे थे?
1: जी आप बोलिए, फिर मैं आपको कट करके ना फिर बोलूंगा, ठीक है?
0: मैं कह रही थी कि अब तभी तो हम जाते हैं, फिर बहुत खुदा क्या कि चुकी सजदे में जाके फिर जाके अल्लाह ताला हमें सुकून देता है, तसल्ली होती है, वरना तो हम बस क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
1: अच्छा अच्छा सजदे भी सायरा कभी कभार रूखे हो जाते हैं, उन सजदों के अंदर जो जो नमी है ना, वो भी वो रब पैदा करता है। कि आपको सजदे में अगर सुकून मिल जाता है ना, तो वो सजदा भी रब ही आपको अता करता है।
0: उसके बगैर गुरु भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी मर्जी से वो करेगा तो होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता।
1: बस रब आप पे और हम सब पे अपनी रोशनी डाले। बहुत शुक्रिया सायरा फॉर कॉलिंग, और आती रहा करें, हम सब आपको मिस करते हैं जब आप नहीं आते, ठीक है?
0: अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़ जी।

अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कभी कभार मैं ये भी सोचता हूँ कि हम सब की जो मुश्किलात हैं या हम सब की जो चाहते हैं या हम सब के जो ख्वाहिशात हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। हम सभी ये समझते हैं, या जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरी मुश्किलात हैं, जो मेरी ख्वाहिशात हैं, वो कुछ और हैं। जो आप सुन रहे हैं, दियारे गैर में बैठे सुन रहे हैं, आपकी कुछ और हैं। जो इस मुल्क के अंदर बैठे सोच रहे हैं, उनकी कुछ और हैं। जो खातून अगर कुछ कोई सुन रही हैं तो उनकी कुछ और हैं। कोई मर्द सुन रहा है तो उसकी कुछ और हैं। कुछ जवान सुन रहा है तो उसकी कुछ और हैं। कोई अगर उधेड़ उम्र सुन रहा है तो उसकी कुछ और हैं। कोई बूढ़ा शख्स अगर सुन रहा है तो उसकी कुछ और हैं। या हम सब यही समझते हैं कि हम सब की ख्वाहिशात, हम सब की मुश्किल या हम सब की परेशानियाँ मुख्तलिफ हैं। हम यही सब समझते हैं ना। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको, हम सब एक कश्ती के मुसाफिर हैं। हम सब की मुश्किलात, सभी की मुश्किलात एक जैसी हैं। अगर इंसान को अल्लाह ने किसी चीज से, किसी शय से महरूम कर रखा है, तो उसको भी जो मेंटल फटीग है या जो उसको भी परेशानी है, जो वो महरूमी का एहसास है, उसको भी वैसा है जो मुझे है। शायद कि मैं किसी और शय के लिए उस महरूमी के एहसास को महसूस कर रहा हूँ और वो एहसास रब ने आपके अंदर पैदा नहीं किया। और शायद कि जिस चीज़ की महरूमी का एहसास आप महसूस कर रहे हैं वो शायद रब ने मेरे अंदर नहीं रखा। लेकिन जो एहसास महरूमी है वो सबका सबका एक जैसा है। सबके सब एक ही एहसास महरूमी के साथ जी रहे होते हैं। या वो खुशी या वो तमानियत या वो सुकून जो मैं महसूस कर रहा हूं वो शायद कि आप महसूस नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप उसको ब्रॉडर विजन के अंदर देखें तो शायद कि कहीं ना कहीं खुशी और सुकून और तमानियत आपकी जिंदगी के अंदर भी है, किसी और शय की वजह से है। और मेरी जिंदगी के अंदर भी सुकून, तमानियत और खुशी का एहसास कहीं ना कहीं है, लेकिन वो किसी और शय की वजह से है। लेकिन जो एहसास है खुशी, जो एहसास है तमानियत, या जो मेरे अंदर जो मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, वो आप भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि दर्द का कोई नाम नहीं है, क्योंकि खुशी का कोई नाम नहीं है। नाम हमने रखे हैं, दर्द के भी नाम हमने रखे हैं। दर्द आपको भी महसूस हो रहा है, दर्द मुझे भी महसूस हो रहा है। खुशी आप भी महसूस कर रहे हैं, वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। कुछ आपके पास भी है, कुछ मेरे पास भी है। किसी चीज से आप भी महरूम हैं, किसी शय से मैं भी महरूम हूं, और वो भी महरूम है जिसको आप समझते हैं कि सभी कुछ उसके पास मौजूद है। किसी बहुत अमीर शख्स को अगर आप कंपेयर करें अपने साथ, तो शायद कि उसके पास बहुत अमीर है और बहुत दौलत है उसके पास, लेकिन शायद उसके पास वक्त नहीं है। और अगर आपके पास वक्त है तो वो वक्त को तलाश कर रहा है और आप दौलत को तलाश कर रहे हैं।

0: और वो कहता है कि मेरे से मेरी दौलत ले लो, मुझे वक्त दे दो। और आप कहते हैं मेरे से मेरा वक्त ले लो, दौलत दे दो। तो सभी के सब लोग किसी ना किसी शय की महरूमी का एहसास उनके दिल के अंदर जरूर होता है और उस महरूमी में जरूर जीते हैं। और सभी के सब लोग कुछ ना कुछ उनके पास जरूर मौजूद होता है जिसकी खुशी का एहसास उनको होता है। सो एवरीबॉडी इज सेम। इसकी मिसाल अगर मैं आपको ऐसे दूं कि किसी का गुजर बसर 10,000, 20,000 या 25,000 में हो जाता है और किसी का गुजर बसर 10-20 अरब में भी नहीं होता, और अगर उसकी मंथली इनकम 2-3 अरब है और किसी की मंथली इनकम 2-3 हजार है, उसको भी उतने ही पैसे दरकार हैं जितने उस 2-3 अरब रुपए वाले को हैं। वो चाहता है कि मुझे भी इतने पैसे मिल जाएं, और 2-3 उसका 2-3 अरब का साइकिल है, तब जाके उसको तमानियत या उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसके मंथली एक्सपेंसेस मीट करते हैं। और किसी को शायद के 20-25 हजार में उसके सारे के सारे मसाइल हल हो जाते हैं और उसको चाहिए, उसका सर्कल इतना है कि वो 20-25 में कंप्लीट कर ले अपना सारा सर्कल। और कोई 2-3 अरब के लिए जदोजहद कर रहा होता और कोई 20-25-30 हजार के लिए जदोजहद कर रहा होता। जदोजहद दोनों सेम कर रहे होते हैं, दोनों सुबह शायद 9 बजे उठ रहे हों और शायद रात 9 बजे सो रहे हों, 8 घंटे 9 घंटे दोनों काम कर रहे हों, या शायद जिसकी 2-3 अरब की जरूरत है वो शायद के 18 घंटे काम कर रहा हो या 20 घंटे काम कर रहा हो। तो दुख तकलीफ परेशानी सभी की बराबर है और खुशी सभी की बराबर है, जरूरत सभी की बराबर है। कॉल है जी, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात।
0: जी जनाब, कौन साहब हैं, कहां से हैं?
1: सर खुरम साहब दी ग्रेट, असद अली मुखातिब हूं लाहौर से।
0: जी असद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वही आपकी जनाब।
0: क्या कहने आए हैं असद साहब?
1: आएगा टॉपिक आपका क्या, मैंने रेडियो ज्वाइन नहीं किया, मैंने प्रोडक्ट कॉल ही कर दी आपको।
0: चलें फिर आप टॉपिक को छोड़ दें, आप टॉपिक पे बात ही ना करें। करते क्या है असद साहब आप?
1: मैं 6 दिन वेले इतवार की छुट्टी।
0: 6 दिन वेले और इतवार की छुट्टी।
1: हाँ जी, 3 टाइम चाहे खाना भी, 3 टाइम पानी जरा बार बार।
0: ओके, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसको आप चाहते हो कि यार ये मिल जाए? क्या चाहते हैं आपके, क्या आपको मिल जाए?
1: यार मैं तो फिलहाल तो रोजगार ही चाहता हूँ जो मुझे मिलने जा।
0: क्या क्या चाहते हैं?
1: रोजगार।
0: रोजगार चाहते हैं आप? ओके, तो आज मेरा मौजू यही है कि किसी के पास रोजगार है उसके पास वक्त नहीं है, और किसी के पास वक्त है उसके पास रोजगार नहीं है।
1: वही हम तो रात भी वेले दिन भी वेले।
0: चले ठीक है, लेकिन कोई ना कोई शख्स कहीं ना कहीं महरूम है मेरे भाई, बस यही कहना चाहता था मैं। ओके जनाब, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
2: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से?
2: मेरा करम अल्लाह पाक, आप सुनाइए सर। ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक जी। नाम बताइएगा अपना।
2: मेरा नाम शेरियार अहमद।
0: शेरियार अहमद, शेरियार अहमद कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: बेसिकली मैं नर्वस सिस्टम, मैं रावलपिंडी में हूँ।
0: ओके, तो क्या करते हैं आप शेरियार?
2: मैं सर आर्म फॉर पाकिस्तान आर्मी।
0: ओके, तो आप रेडियो सुन रहे थे या बस आपने वैसे ही कॉल मिला ली?
2: मैं सर जी रेडियो सुनता हूँ, आपकी जितनी भी ट्रांसमिशन होती है ना मैं सारी ये तकरीबन सुनता हूँ।
0: ओके, तो आप क्या कहने आए हैं फिर, अभी आपने क्या सुना और उस बारे में क्या बात करेंगे?
2: आप मौजू रखा हुआ है कि सॉरी आपने मौजू रखा हुआ है कि तकरीबन ये उसका रोजगार का राइट?
0: नहीं जी, रॉन्ग। बिल्कुल रॉन्ग, रोजगार का बिल्कुल नहीं रखा।
2: तो यही बात हो रही थी।
0: हाँ अच्छा, शेरियार भाई आप जैसे मेरे जैसे भाई कुछ ऐसे होते हैं ना, जो अक्सर ऐसा होता है ना, मैं घर में अगर अपने फोन में बिजी हूँ ना, तो मेरे इर्द गिर्द करीब कोई मेरा अपना बैठा हो और मुझसे वो बातें करी जा रहा हो और अचानक उसको महसूस होना कि यार ये मेरी बात नहीं सुन रहा, तो वो फिर मेरा इम्तिहान लेते हैं, कहते हैं अच्छा यार बताओ मैं क्या बात कर रहा था या कर रही थी। तो मैं आखिरी वाला जुमला उठा लेता हूँ, जैसे अभी आपने उठाया रोजगार वाला, तो मैं आखिरी वाला जुमला उठा के बोल देता हूँ कि आप ये बात कर रहे थे, तो कभी कभार तुक्का लग जाता है। सुन लेना शेरयार भाई, सुन लेना
2: के बीच में कुछ काल मत मिलती है तो फिर कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कोई बात शुरू होती है तो कोई और बात शुरू कर रहा, मतलब समझ नहीं आ रही होती क्या करे पता।
0: अच्छा सुन ले,
2: साइकिल वाली बात की 10 लाख।
0: अच्छा मसला ही आपका ये है ना कि आप सुनते नहीं है,
2: सॉरी
0: आपका मसला ये है आप सुनते नहीं है। सुन तो ले मैं क्या कहना चाहता हूँ।
2: जी जी,
0: आप पहले भी नहीं सुन रहे थे, अब भी मेरी नहीं सुन रहे है।
2: बोले बोले सुनाए।
0: तो चलें, आप पहले भी नहीं सुन रहे थे, अब भी नहीं सुन रहे, अपनी सुना दे बस, फिर मैं कॉल काटूं। क्या कहना है?
2: नहीं, बोले बोले
0: नहीं, नहीं आप बोले। कहने क्या हैं? आप कहिए और फिर आगे
2: बढ़े। मैं मेरा मकसद ये है कि मेरी राय ये है कि ये जो राहत साहब है ना, ये गायकी में नहीं होने चाहिए।
0: अच्छा, ये कहाँ होने चाहिए थे?
2: मेरा कहने का मकसद ये है।
0: अच्छा, तो ये राहत साहब कहाँ होने चाहिए थे?
2: ये इनको ये जो मोहल्ले में नहीं, ये टेप रिकॉर्डर वाले जो लोया बेच रहे हैं, इनकी टेप रिकॉर्डर पर पढ़नी चाहिए।
0: अच्छा, ये जो आप राहत फतेह अली खान साहब की बात कर रहे हैं?
2: जी।
0: अच्छा, अब शेरयार भाई आपने ना बड़ी सख्त बात की है वैसे, और आपने एक नेशनल इंटरनेशनल मीडियम पे आके आप बड़ी सख्त बात करें। आपको पता है राहत साहब की हिस्ट्री का?
2: राहत साहब नुसरत साहब जो थे वो लेजेंड एक दुनिया भर के।
0: आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है?
2: राहत साहब कुछ भी नहीं है।
0: अच्छा शेरयार साहब, आपकी उम्र क्या है? आप अपनी उम्र बताइए।
2: मेरी 40 साल से ऊपर एज है।
0: 40 साल हो गई। राहत साहब की एज क्या है?
2: उनकी भी इतनी होगी।
0: अच्छा, उनकी भी इतनी होगी, लेकिन आपको पता है कि वो जब 7 साल के थे ना, तो उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी, और किसके साथ दी थी जिसकी अभी आप तारीफ कर रहे हैं?
2: उनके
0: साथ सुने ना अच्छा मेरी बात सुन ले, आप सुनने में बड़े वो हैं, कमजोर हैं, आप सुने बात। उनके साथ जो नुसरत साहब के साथ बैठ के जिन्होंने तबला बजाया है, जिन्होंने एक सारंगी बजाई है, जिन्होंने कोई बांसुरी बजाई है, जिन्होंने कोई हारमोनियम बजाया, वो भी अपनी दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना के गए हैं, और राहत साहब तो उनके शागिर्द खास थे। आप उनके बारे में ये राय कायम नहीं कर सकते, आप अकेले अपनी राय कायम नहीं कर सकते उनके बारे में।
2: सर, जिन्होंने तबला बजाया ना वो पसरूर के आदमी थे। उसके बाद अगर आपने सुनना है ना, बस इश्क मोहब्बत सुन ले, उसके अंदर जो सरगम लगाता है ना बंदा, उसके साथ की सरगम लगा दे, फिर मैं उसको मानूंगा राहत फतेह अली खान को। ये राहत फतेह अली खान गायकी में एक नंबर वन है।
0: अच्छा चले, आप उनको माने ना माने, दुनिया उनको तस्लीम करती है। यही मसला है ना हम सब में, हम इश्क नहीं करते। और कल की बात है कि परसों की बात है, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब की वैसे मेरा दिल चाह रहा था उनको सुनने का, तो मैंने उनके ना लिखा कि नुसरत फतेह अली खान साहब ओल्ड वीडियोस टिकटॉक पे आई थिंक तो लिखा, तो वहाँ पे एक वीडियो सामने आई, तो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा मैंने देखा साथ बैठा हुआ, और वो ऐसे आंखें ताड़े हुए नुसरत साहब को देख रहा था, और उनकी सरगम के पीछे सरगम लगा रहा था। और मैं सोच रहा था कि फिर साथ ही एक वीडियो है जिसमें शाहजमान राहत फतेह अली खान साहब के जो बरखुरदार हैं वो भी गा रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि यार ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, और घंटों घंटों के रियाज की बात करते हैं राहत फतेह अली खान साहब, या अभी अपने बच्चे के अंदर भी वो चीज़ डाली, और जो ख़ानदानी जो है, जो मौसीकार हैं उनके बारे में आज मैं उठ के बात करूँ या कोई और उठ के बात करे, तो शायद के बात यह है कि हम ना जान हैं, हम अनजान हैं, फिर हमें पता नहीं है, शायद हम गलत कह रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप किसी को इस तरह कहते हैं और ऐसे मीडियम पे बैठ के कहते हैं कि वो सही गायक नहीं है, उनको टेप रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, यार क्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा, हम ऐसे ही हैं, हम दूसरों के बारे में राय कायम कर लेते हैं यार, ये नहीं, इसको अल्लाह ने क्यों बता कर दिया यार, इसको ये इसको क्यों मिल गया। इसको क्यों अता हो गया, इसमें क्या था ऐसा कि इसको अता, इसको तो टेप रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। मेरे भाई, आपको नहीं पता उसकी स्टोरी का। उसको जो रब ने अता कर रखा है ना, जो आपने सुना ही नहीं पहले आपने प्रोग्राम को, और आखिरी बात आपने पकड़ी है, और आखिरी बात के बाद आपने कहा आप रोजगार पे बात कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम सुना ही नहीं, प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने बात ही ये की है कि जिसको भी रब ने अता कर रखा होता है, जिसके ऊपर भी रोशनी होती है, जो भी एक चमकता सितारा होता है, उसके सितारा बनने के पीछे कुछ ना कुछ जरूर होता है मेरे भाई। रब चाहे अगर ना तो वो मगरिब से सूरज को तुलू कर सकता है और मशरक में गुरूब कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो हमेशा मशरक से उसको तुलू करता है और मगरब में गुरूब करता है। उसका एक फिनोमेना है, उसका एक फार्मूला है, उसका एक उसूल है। रब ने जिंदगी में कामयाबी के भी उसूल बना रखे हैं। जिंदगी में आपने अगर रोशनी हासिल करनी है, अपने आप को एक चमकता सितारा बनाना है, तो उसके लिए असबाब पैदा करने हैं। यही तो बात मैं कर रहा था, और आपने आके उसके ऊपर मोहरे सुप्त डाल दी कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, कि हम किसी के बारे में राय कायम कर लेते हैं, यार इसको क्यों मिला है, ये क्यों ऐसा, इसके पास तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको तो टेप रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। एनीहाउ जी, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी।
2: वालेकुम सलाम सर, क्या कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक।
0: कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं सुन रहा था शरियार की बातें।
0: आप कौन बात कर रहे हैं? आपने शरियार पे बात नहीं करनी मेरे भाई, आप कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं अदनान अली भी बात कर रहा हूँ फ्रॉम अटक।
0: अच्छा अदनान साहब, आपने मौजू पे बात करनी है, शरियार साहब की बात हो गई, खत्म हो गई बात, मौजू पे बात।
2: नहीं वो गलत बात कर रहे थे ना, क्योंकि मैं लीजेंड को, जो लीजेंड होता है वो लीजेंड ही होता है।
0: अच्छा शरियार, अच्छा आप अदनान अलवी साहब, अलवी साहब, अलवी साहब सुन लीजिए, अलवी साहब सुन लीजिए, अलवी साहब सुन लीजिए, अलवी साहब, अलवी साहब मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं आपको भी इजाजत नहीं दूंगा कि शरियार साहब जो है वो मेरे लिसनर हैं, उन्होंने फोन की है, उन्होंने अपना एक नैरेटिव बयान किया है, आप उनके नैरेटिव के ऊपर दुरुस्तगी या गलती की मोहर नहीं सुप्त कर सकते। आप मौजू पे बात कीजिए, ठीक है? उन्होंने सही किया गलत किया आप ना करें, मैं कह रहा हूँ उन्होंने सही किया या गलत किया, उन्हें अपनी राय दी।
2: आपकी बात बहुत कम आ रही है।
0: अच्छा चले आप दोबारा कॉल कीजिए फिर, ठीक है? हाय मैं कितने कितने सीधा करिए यार। ओके जी अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
0: जी, कौन है, कहां से?
3: मैं कराची से फरा बात कर रही
0: हूं। जी फरा, फरमाइए क्या कहने आई हैं?
3: आपका जो पूरी बात थी वो सुन रही थी, बिकॉज़ रैंडम ट्यूनिंग, तो आपने जो बात की है उसको हम, मेरे दिमाग में जो पॉइंट आया था वो ये है कि हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, वाले सारे इंसान लमासा, इंसान जितनी कोशिश करता है, जितनी मेहनत करता है, हम उसे उतना ही नतीजा देते हैं।
0: वाह बहुत खूब जी जी।
3: तो जब हमें इतना क्लियर और इतना वाजे तौर से बताया जा रहा है, तो पहले तो आपको फोकस होना चाहिए कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, और जब आपको ये बात वाजे हो जाए तो फिर आप उस फोकस की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए फिर आप अपनी डायरेक्शन जो है वो सही तरफ अगर कर लेते हैं अब, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ऑन अल्लाह योर क्रिएटर। आपको पहले तो अल्लाह ताला से बात करनी चाहिए आपके, क्योंकि जैसे एक माँ होती है वो, आप अपनी वालदा के साथ बैठ के अगर एक डिस्कशन करते हैं कि मुझे ये चाहिए या मैं ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो दे स्टार्ट गाइडिंग यू। तो कुरान में ये एक आयत है कि जो हमारी तरफ रुजू करता है हम उसको रास्ता दिखाते हैं जैसे, और आपने बात सही की है कि असबाब की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अलग अलग मुसब्बिबुल असबाब है, इस पर यकीन भी रखना चाहिए। वो वक्त जब बार सफर जिंदगी में ऐसे वक्त भी होते हैं जब हमारे आस पास जो है ना कोई रास्ता नहीं होता, विच कैन ब्लाइंड, और इट मोस्टली हैपेंस क्योंकि लाइफ जो है ना हर रोज एक डिफरेंट तरीके से आपके जो है एक्सप्लोर होती है, लेकिन आपका मकसद होता है आपके जहन में, आपका रास्ता होता है आपके जहन में, लेकिन वो रास्ता किस तरफ से निकलेगा यू डोंट नो। तो उस वक्त आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके पीछे फिरौन की पूरी फौज थी, और वो जो है उस फौज के पीछे जो है उन्होंने, जब उनकी कौम ने उनसे ये कहा कि मूसा आगे डरिए, पीछे जो है वो फिरौन है, कहाँ लेके आ गए उन्होंने, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ना पीछे देखा था ना आगे देखा था, उन्होंने सिर्फ ऊपर देखा था और कहा था इन्ना माहिया रब्बी सयादी, मेरा अल्लाह मुझे मेरा रास्ता दिखाएगा, और उसी वक्त हुआ था कि अपनी आसा नीचे डालें और रास्ते खुल गए थे। और उन रस्तों पे चलना वो यकीन के साथ था, ये नहीं सोचा था कि मैं बीच रस्ते में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा. योर फेथ मस्ट बी दैट मच स्ट्रांग कि आप फाइनल उस तक पहुंचेंगे. अगर आप पहले से अपने माइंड में ये चीज डिसाइड करते हैं ना तो आप फाइनल तक पहुंचते हैं. एंड दिस इज द ओनली थिंग विच क्रिएट्स ऑल द
0: मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी. थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय. बिना बात भाई मौजू पे बात कीजिए और किसी विजन के साथ आइए कि समझ आए क्या क्या कहना चाहते हैं, मुझे भी कुछ बताइए. लीजिए जी, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम सर.
0: जी जनाब,
4: आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, क्लियर.
0: जी कौन साहब है?
4: जनाब ले भी बात कर रहा हूं, फ्रॉम अटक सर.
0: अच्छा जी, अलवी साहब.
4: जी जी. तो सर, तो आपका प्रोग्राम मैं शुरू से सुन रहा था, माशाल्लाह प्रोग्राम. okay. आपने मतलब और टॉपिक पे की तो बहुत जबरदस्त यार है.
0: थैंक यू.
4: तो दूसरी बात ये कि सर, एक तो होता है किसी के साथ मतलब हो जाना और अल्लाह ताला जारी पर मेरे साथ हुआ है ना ऐसा, तो एक होता है ना तो मौजदा जो अल्लाह ताला करते हैं ना वो कुदरती होते हैं. अभी इंसान सोचता है कि यार ये जो मैं कुछ करूंगा ना वो अल्लाह ताला उससे बढ़ के अता करते हैं इंसान को. और इंसान को तवक्को नहीं होती कि इंसान की कि यार मुझे इससे ज्यादा मिल जाएगा. फिर बंदे को यकीन होता है कि यार मेरे लिए ये बेस्ट था.
0: सही, बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बजा फरमाया आपने. थैंक यू एलवी साहब, अपना ख्याल रखिए.

0: ओके जनाब, 1:24 है, आरजे के भी मुझे कहते हैं, आप सुन रहे हैं मनोवा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के स्टूडियो से बिल्कुल बराह रास्त। और 15 सितंबर हो चुकी है, 2026 है, और 26 भी अपने अख्ताम की जानब आहिस्ता आहिस्ता। कितना जल्दी से वक्त गुजरता है ना, समझ नहीं आती, कभी 24, कभी 25, और फिर आज 26, और फिर 27 हो जाएगा। वक्त बहुत तेज़ी से भागे चला जा रहा है। और अभी 12 बजे थे और अभी 1:30 बज चुका है, 1.5 घंटा गुजर चुका है। ऐसे ही वक्त हमारे हाथों से भी फिसल रहा है। लेकिन कुछ लोग बड़े मुतमईन होते हैं अपने वक्त के गुजरने के साथ साथ, अगर उन्हें वक्त अच्छा गुजारा होता है, अगर वो राज दुनिया समझ जाते हैं ना, तो तसल्ली रखते हैं कि अच्छा, हाँ अच्छा गुजरा भाई, जो भी गुजरा अच्छा गुजरा, कोई अरमान बाकी नहीं है। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो लीजिए जनाब, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब कौन साहब है, कहाँ से हैं? एरम, बहुत हल्के से बात कर रही हैं आप, थोड़ा सा जोर लगाइए, थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, थोड़ा आंखें खोलिए, क्या कर रही हैं जनाब? आपने डिनर नहीं किया?
1: अब आवाज आ,
0: हाँ अब आ रही है ना आवाज, तो बताइए एरम, लाहौर में आवाज आ रही है?
1: हाँ जी, आवाज आ रही है, इसलिए
0: नहीं, हमारे यहाँ तो रात नहीं है, हमारे यहाँ तो इस वक्त जो है वो बज रहे हैं, 1:30 बज रहा है, दोपहर हो रही है।
1: माशाल्लाह आला प्रोग्राम, आज तो मेरा भाई बहुत संजीदा हो चुका।
0: हाँ देखो, मैंने कहा ना कभी आपको संजीदा वाले प्रोग्राम भी करना चाहिए। मैं देखना चाह रहा था कि अच्छा कुछ संजीदा सुनने वाला भी है या नहीं है, या वैसे ही बस लोग जो है वो चाहते हैं कि बस हल्ला गुल्ला हो, गुल गपाड़ा हो।
1: हाँ जी, कभी कभी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। हाँ, तो अब आला प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, शुरू से सुन रहे हैं।
0: ओके,
1: अल्लाह ताला जिसको जो अता किया उसके उन्हें शुक्र करना चाहिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला मकबूल जिन्हें शुक्र अदा करे।
0: आमीन। तो क्या क्या करती हैं आप, इरम करती क्या आप?
1: सबको अदा करे।
0: अच्छा, इरम क्या करती हैं आप जिंदगानी में?
1: जी कुछ नहीं।
0: ओके, घरदारी करती हैं आप, कुछ तो करती होंगी?
1: हाँ जी,
0: आप घरदारी करती होंगी?
1: जी घरदार।
0: ओके,
1: घर में होते हैं।
0: ओके, तो घर में आपको सबसे अच्छा काम क्या लगता है, आपको जो सबसे ज्यादा फैसिनेट करता हो कि यार ये काम जबरदस्त है, रोजाना सुबह खुशी से उठ के करती हैं आप?
1: भाई आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं आप?
0: आवाज कट रही है
1: जी, अब सही आ रही है।
0: चले, अच्छा तो मैं पूछ रहा हूँ कि घर में ऐसा कौन सा काम है जो आप करती हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है?
1: घर में तो जो भी काम हो बंदा अगर दिल से करे तो अच्छा ही होता
0: है। आपके घर में कितने अफराद हैं?
1: माशाल्लाह
0: 10 अफराद हैं। 10 हैं, उनमें सबसे ज्यादा अजीज कौन है आपको?
1: सभी अजीज तो वैसे तो माँ बाप ही होता है अजीज।
0: सबसे ज्यादा अजीज कौन है
1: जी?
0: सबसे ज्यादा अजीज कौन है आपको?
1: सर अभी फर्क नहीं किया, और माँ ही है वो।
0: मम्मा है। ओके जी, अल्लाह ताला आपकी वालिदा को सलामत रखे और अल्लाह ताला उनको सेहत मंद रखे।
1: आपको सलामत रखे और सबको सेहत, सलामती वाली सेहत अता फरमाए।
0: आमीन आमीन।
1: सबको अल्लाह ताला मक्का मदीने का सफर अता फरमाए।
0: आमीन। थैंक यू इरम, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, थैंक यू, बाय बाय। इरम दीजी मेरे साथ लाहौर से, और आज जो है ना थोड़ा सा मैंने संजीदा प्रोग्राम रखा ही है, और संजीदा उस तरह से नहीं रखा कि आप उसमें कोई बात नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उस तरह से संजीदा नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आज मैं थोड़ा सा ना गहरा प्रोग्राम करूँ, गहराई वाली बातें करूँ, क्योंकि मैं फील कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि गहराई वाली बातें सुनना चाहते हैं, और रात के इस पहर सुनना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि कोई अच्छी बातें हों, कुछ इस तरह की बातें हों जिससे कुछ सीखा जाए, कोई कोई कनेक्ट हो, कोई कहीं दिल का कोई तार बजे, कहीं को घंटी हो। और फ्राइडे को मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो वाला प्रोग्राम सुनाऊं जो मैं यूजुअली आपको सुनाता होता हूं, और मंडे को मैं आपको वो वाला प्रोग्राम सुनाया करूं, या फ्राइडे को ऐसा सुनाया करूं कि जिसमें वो वाले संजीदा लोग जो कि संजीदगी सुनना चाहते हैं और कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं कि जो उनके दिल के तारों को छेड़े, और वो कॉल करें और अपने दिल की बातें हमसे कहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइलेंट लिसनर होते हैं जब वो फनी प्रोग्राम सुन रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर बस मौज मस्ती इंजॉयमेंट हो रही होती है, क्योंकि उस तरह के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं, तो वो फिर उनके आने से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और चुपके से सुन रहे होते हैं और कभी शामिल नहीं होते। तो आज मैं चाहूँगा कि वो लोग जो साइलेंटली सुनते हैं और रेगुलरली सुनते हैं और बात करना भी चाहते हैं लेकिन वो समझते हैं कि यार इसमें क्या, हमारा तो मिजाज ऐसा नहीं है कि हम ये वाली बात करें, तो आज वो लोग आएँ और वो बताएँ कि वो क्या सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम
2: जी। शफीक बोल रहा हूँ जी, रघुनीत
0: जी। शफीक साहब, कैसे मिजाज हैं आपके?
2: अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा, अभी तक मुझे लग रहा है कि सारे न्यू न्यू न्यू जो है वो लिसनर्स हैं या आप पुराने हैं और कॉलर न्यू है?
2: सर, इससे पहले एक दफा बात हो चुकी है।
0: अच्छा, ओके जी। तो शफीक साहब,
2: तकरीबन साल तकरीबन हो गया है।
0: अच्छा, एक साल बाद आपने कॉल की है, वजह जान सकता हूँ?
2: वजह कोई नहीं है, बस कॉल नहीं लगती है, बाद दफा कॉल नहीं लगती, कोशिश करने के बावजूद भी कॉल नहीं लगती।
0: तो आप दोबारा कोशिश कर लिया करें।
2: जरूर, इंशाल्लाह।
0: ओके, तो शफीक साहब क्या करते हैं आप?
2: मैं एक स्कॉटी कंपनी में हूँ।
0: ओके, तो इस वक्त आप ड्यूटी पे हैं?
2: जी, ड्यूटी पे हूँ।
0: ओके, तो क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से?
2: बस अभी काफी सारे जो साथ प्रेजेंटर हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, माशाल्लाह अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी वो आप वाली बात के जो अल्लाह ताला तौफीक देता है वही होती है, तो कोशिश भी यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से, अल्लाह फरमाता है कि मुझसे तौफीक मांगो, किसी भी चीज की तौफीक मांगो मैं अता करूंगा अच्छे के लिए, और गुमान भी अच्छा रख कर उसकी वो तौफीक मांगनी चाहिए। तो बस मेरा कहना तो यही है कि अगर अच्छा गुमान करके उसकी तौफीक मांगेंगे किसी भी अच्छे काम के लिए तो अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। ये कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं ये सब उसके जो कुदरत है, वो हम देखते हैं कि कई चीजें हमारे सामने एक पौधा छोटा सा निकलता है, उगता है, तो वो उसके अंदर कितने रंग निकलते हैं। हम उन रंगों को जब देखते हैं, ठीक है, तो हमारे दिल के अंदर अल्लाह ताला की जो वो कुदरत है, वो उसकी निशानियां हैं, वो हमारे सामने आती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे वो उस तरह की बात करना वो नहीं आ रही है कि जिस तरह मैं या आप जिस तरह वो समझाते हैं या बात करते हैं, क्योंकि हमारी उतनी तालीम नहीं होती है, हम उस तरह की बात नहीं कर सकते।
0: शफीक साहब, शफीक साहब
2: मेरी को समझ गए होंगे।
0: शफीक साहब, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी सारी बातों से मुत्तफिक हूँ, कुल्ली मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ, और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है
2: जी, बस तो, आगे आपने इस बात को
0: तो मुझे
2: रोशनी आपने अच्छा, डालनी है, मैं बस यहीं पे।
0: अच्छा सुन ले शफीक साहब, सुन ले मेरी बात, सुन ले शफीक साहब, जितने भी कॉलर आए हैं ना सारे अच्छे कॉलर थे, लेकिन मैं आपको बरमला कहना चाहता हूँ कि मेरी आज के इस प्रोग्राम के सबसे बेस्ट कॉलर आप हैं, कि जहां से मैं बात करना चाह रहा था और जो बात मैं करना चाह रहा था वो आपने पकड़ी है, ठीक है। तो यू आर ग्रेट। अगर आप बात, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मुझे समझा नहीं पा रहे, लेकिन मैं उसके ऊपर थोड़ी मजीद रोशनी डालता हूँ, और वाकई आप पहुंच गए, जो मैं कहना चाहता था वो आप पहुंच गए, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एटलीस्ट मैं शफीक साहब तक वो बात पहुंचा पाया। थैंक यू शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।

सभी कॉलेज का बहुत शुक्रिया जी। और मैं यही कहना चाह रहा था कि बस जो शफीक साहब ने कहा, यही समझाना चाह रहा था जो शफीक साहब समझ के। ये गाना आपके नाम करते हैं, मुझे आरजे की भी कहते हैं, और वक्त हुआ चाहता है 1:33, और रात का ये पहर है, और आज मंगल का रोज है।

0: और किसी पठानों के आप भी सुन रहे हो क्या? पेशावर वालों आप भी सुन रहे हो? हाँ पठानों, दिस इज फॉर यू। अच्छा कल रात को मैं पेशावर गया था और वहाँ, अच्छा पठान कल्चर भी ना बहुत मजेदार कल्चर है वैसे। आपको एक अलग ही वाइब मिलती है अगर आप इस्लामाबाद में है ना, तो आपको कोई खास कल्चर नहीं दिख रहा होता क्योंकि यहाँ पे सारे कल्चर जो है वो मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब के अंदर, अगर इंटीरियर पंजाब के अंदर अगर आप जाएँ या आप देहातों में जाएँ, तो वहाँ पे आपको ना प्योर पंजाबी कल्चर आपको मिल रहा होता है। इसी तरह अगर आप पेशावर या दीर चारसद्दा या मेंगोरा या इन इलाकों के अंदर अगर आप जाएँ, तो आपको वहाँ पर पठान कल्चर मिल रहा होता है। आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएँ तो वहाँ पर एक अलग कल्चर आपको मिल रहा होता है। तो ये जो इलाकों के अंदर जो कल्चर है, जो खूबसूरती है, ये भी बड़ी मज़ेदार है वैसे, आपको बड़ी फैसिनेट करती है अगर आप थोड़े अरसे के बाद जाकर देखें तो। सो पेशावर से अगर मुझे कोई सुन रहा है जी, या किसी केपी के इलाके से कोई मुझे सुन रहा है, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और आज के मौजू के हवाले से ज़रूर बात कीजिएगा। और जितने कॉलर्स आज मेरे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज नए नए कॉलर्स आ रहे हैं। तो जो पुराने मेरे कॉलर्स हैं जी, उनसे भी मैं कहूँगा कि आपने मौजू के ऊपर बात करनी है। और जो नए आने वाले कॉलर्स हैं, अगर उनको आप मौका देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और वक्त बहुत कम रह चुका है। सो अगर आप जो पुराने कॉलर्स हैं वो सिर्फ हाज़िरी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो आज आपकी हाज़िरी पहले से मैंने अटेंडेंस की लगा दी है और पहले से मैंने फुल कर दी है, ठीक है? तो आज जो है वो नए कॉलर्स को थोड़ा मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, अगर आप अपनी आवाज़ दुरुस्त कर सकते। कौन बात कर रहे हैं? नहीं बहुत कम आ रही है। कौन बात कर रहे हैं?
1: रियाज बात कर रहा हूँ।
0: जी रियाज बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: ये रायवंड।
0: रायवंड लाहौर से बात कर रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: है। जी रियाज साहब क्या करते हैं आप?
1: आपका सुन रहा था सर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें आपने की।
0: शुक्रिया।
1: इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ये इंसान के पास वक्त होता है, हर किसी के पास एक वक्त होता है, वक्त को जो जाया कर देता है वो बाद में फिर पछताता ही है।
0: सही।
1: के अलावा जो अल्लाह की अता है वो तो है ही
0: जी,
1: लेकिन ये है कि कोशिश भी जरूरी है।
0: कोशिश जरूरी है, आपने जद्दोजहद जारी रखनी है
1: जी,
0: और आपने सिर्फ कोशिश करनी है। आपको इख्तियार में जो दे रखा है रब ने, वो सिर्फ कोशिश दे रखी है, राइट?
1: बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि वो देने वाला ये भी समझता है कि ये इसके लिए नुकसानदेह है या नफामंद है, ये उसी को पता होता है। ये हासिल करने वाले को ये नहीं पता होता कि ये चीज, जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूँ, ये मुझे नफा देगी या नुकसान देगी। लेकिन जो अता करने वाला वो बेहतर जानता है।
0: आए, आए, आए। वाजिब।
1: कब किसको क्या मिलना चाहिए।
0: जाहिरी आंख से लग रहा होता है आपको कि यार ये नुकसानदेह चीज है, लेकिन आपको नहीं मालूम होता कि इस नुकसानदेह चीज के अंदर रब ने क्या क्या कमाल कर रखा है। और आपको अगर हिदायत मिलनी है तो इसी नुकसानदेह चीज से मिलनी
1: है।
0: ऐसा अक्सर मैंने देखा है सर, कि आपको हिदायत का मंबा वहाँ से फूटता है या हिदायत का चश्मा वहाँ से फूटता है जहाँ से हम कहते हैं ना कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
1: तसव्वुर भी नहीं होता, बिल्कुल।
0: रियाज साहब अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।

अभी आ जाओ गाना है जावेद बशीर का, और मेरे साथ अभी महमूद हैं। अभी महमूद मुझे कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है। मोहम्मद साजिद है मेरे साथ जी लाहौर से।

0: ओके जी, 1:46 हैं के भी आपके साथ हैं और कॉलर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम।
1: फरम भाई
0: जी। जी
1: मैं शेख बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से।
0: जी शेख साहब, कैसे हैं आप?
1: शेख साहब नहीं, सैफ, सैफ।
0: सैफ बात कर रहे हैं। ओके जी
1: जी, जी।
0: सैफ भाई कैसे हैं आप?
1: मैं तो बस लगा
0: अच्छा,
1: मेरा शेर भी है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहता हूँ।
0: सुनाइए जी साहब। साहब
1: आदमी में
0: जी
1: अखा खुल गई, दिल दिया मेरिया, जदी मैं फकीर क्या।
0: जी जी सुन रहा हूँ साहब। साहब
1: अखा खुल गई, दिल दिया मेरिया, जदी मैं फकीर क्या, जिद पीछे पीछे टन कतारा, मेरा बदा वजीर क्या।
0: वाह।
1: ਉਹ ਜੇ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਦਕੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਪਈ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਵੇਖਿਆ। ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਕ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੂੰ, ਅਬ ਵੀ ਆ ਜਾਓ।

अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ये वही घर है, ये वही हुजरा है, अब भी आ जाओ, आओ के मंतजर है निगाहें, अब आ भी जाओ, शब के साथ ढल न जाए साए, अब आ भी जाओ। हर आहट पे दिल का धड़कना यही कहता है, कोई आहट ना तिश्ना रह जाए, अब आ भी जाओ।

0: खामोश है रात और अकेला है चांद भी, खामोश है रात और अकेला है चांद भी, चांदनी न यूं ही बिखर जाए। अब आ भी जाओ, कितनी बातें हैं जो कहनी हैं तुमसे, ये वक्त यूं ही ना गुजर जाए, अब आ भी जाओ। एक आस पे ठहरी है जिंदगानी की रवानी, एक आस पे ठहरी है जिंदगानी की रवानी, आस का ये धागा ना टूट जाए, अब आ भी जाओ। और फिर कहता है कि ये भी शिकवा था उन्हें कि हम बुलाते नहीं, ये भी शिकवा था उन्हें कि हम बुलाते नहीं, अब जो बुलाया तो वो आते ही नहीं। उनसे मैं कहता हूं कि अब भी आ जाओ। ना जाने कौन सा ऐसा मुखड़ा था, तरसता है अब भी आ जाओ, अब भी आ जाओ। ना जाने कौन सा ऐसा मुखड़ा था जो मुड़ के मुझको देखता था, तरसता है अब भी आ जाओ। उस मुखड़े का दीप आज भी दिल में जलता है, मैं उससे कहता हूं कि अब भी आ जाओ। तीरगी शब में एक शम्मा जलाए रखना, कोई आए ना आए हम तो मुंतजर हैं, अब भी आ जाओ। आओ के मुंतजर हैं निगाहें, अब भी आ जाओ। अब तक मैं यहां से जा। ओके जी, 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आपके बी के साथ, और मेरे साथ मुखातिब हैं कौन साहब?
1: अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा क्या हाल है?
0: अरे आंटी आई कैसी?
1: इतने अरसे बाद बात हो रही है।
0: बस ये फिर ना कहते हैं कि बेवफाइयां हैं आपकी आंटी।
1: सर मैं तो मदद ले लो, मैं एक जस्ट फॉर यू एक ले लो प्लीज।
0: अच्छा मैं अब पूरे का पूरा प्रोग्राम ले लूं और आप
1: ले लो ना मारने का, ये वाला बेशक हो ना।
0: अच्छा मैं अभी तो आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा, लेकिन देखे मैंने अभी ना दो प्रोग्राम्स करने लग गया हूँ, एक फ्राइडे को कर रहा हूँ एक मंडे को कर रहा हूँ।
1: लेकिन दोनों तब पे कर रहे हो ना? रात के दोनों कर रहे हो?
0: हाँ रात के दोनों कर रहा हूँ, लेकिन मॉर्निंग का प्लान है इन फ्यूचर।
1: एक रात का छोड़ दो ना, तो एक मॉर्निंग वाला ले लो। ठीक
0: अच्छा चले ठीक है, सोचते हैं।
1: कभी भी कुछ भी इत्तेफाकन नहीं होता, हर वो इंसान जिससे आप मिलते हैं वो आपके तकदीर में पहले से लिखा होता है।
0: अच्छा
1: कोई मोहब्बत बनकर, कोई शफा बनकर, और कोई नेमत बनकर, कोई इनाम बनकर, कोई सबक बनकर। इंसान की सबसे खूबसूरत सिर्फ अल्लाह पाक की तकसीम पे राजी होना है, और इस बात पे यकीन रखना है कि तमाम दुनिया के तमाम खजाने अल्लाह पाक की मलकियत हैं, और अल्लाह ताला के सिवा कोई नफा और नुकसान नहीं दे सकता।
0: बेशक बेशक बेशक। ओके जी, शायर कह रहे हैं कि अब भी आ जाओ, और शायर ये भी कहता है कि अखियां उड़ीक दिया दिल वजह मारदा, कि अब भी आ जाओ, आ जाओ बस, कि आंखें उड़ीक रही हैं दिल वाजा मार रहा है।

दिस इज मनु इंटरनेशनल और मुझे आरजे के भी कहते हैं, साथ आपके साथ 2 बजे तक है, 1:53 हुए चाहते हैं।

0: ओके जनाब, 1:56 हैं और आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूं और बहुत सारे फेसबुक पे दोस्त मेरे साथ हैं। नाम आपके मैं जल्दी जल्दी शामिल कर लेता हूं कि कौन कौन लोग मेरे साथ शामिल हाल हैं जनाब। और मेरे साथ हैं जी नज़ीर खोसो हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं जी महर लजपाल हैं, और कोई ऑनलाइन वाले भाई हैं। ऑनलाइन वाले भाई अपना नाम ज़रूर लिखिए क्योंकि आपका नाम मैंने पुकारना है, तभी मैं आपका कमेंट जो है वो प्रोग्राम में शामिल कर सकता हूँ। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, थैंक यू सो मच। अभी मोहम्मद मेरे साथ थे, अभी महमूद मेरे साथ रहे, मोहम्मद साजिद मेरे साथ शामिल हाल हैं, और इसके अलावा जी बहुत सारे और दोस्त हैं जी। फसिया जन्नत है मेरे साथ जी, अंसारी साहब है मेरे साथ, आयशा खान सुन रही हैं, हानिया बतूल सुन रही हैं जी, हुमैरा नाज सुन रही हैं, हीरा फातिमा है, और अयान कामरान है, मिसेस सईद मलिक सुन रही हैं जी, हाजरा बतूल सुन रही हैं, तायरा अजीज़ हैं, फैसल अब्बास मेरे साथ हैं, सना मिनहास हैं, और मेरीना बिलाल है मेरे साथ शामिल हाल। वक्त रुखसत हुआ चाहता है, उससे पहले आपको मौका ज़रूर मिलेगा। जितने दोस्त कॉल मिलाते रहे हैं और बड़ी कोशिश करते रहे हैं, उन सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या करें, वक्त की कैद है ना। कोशिश रहती है कि मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं, 2-3 कॉल्स मजीद लूंगा, लेकिन सभी को मुमकिन नहीं होता कि प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सके। खैर जनाब, जोशील मेरे साथ इस्लामाबाद से हैं जी, वेरी क्यूट एंड वेरी यूनिक नेम जी। आमना सरवर हैं इस्लामाबाद से, अस्मा हैं इस्लामाबाद से सुन रही हैं जी, अलिशबा हैं रावलपिंडी से प्रोग्राम सुन रही हैं, इरम चौहान हैं रावलपिंडी से, सबीहा जावेद हैं रावलपिंडी से, सादी मलिक हैं रावलपिंडी से, सुमेरा हैं गुजर खान से सुन रही हैं, समीर मिनहास हैं मेरे साथ जी रावलपिंडी से, इस्मा है मेरे साथ चकवाल से प्रोग्राम सुन रही हैं जी, कोमल हैं गुजर खान से, सुमेरा है साईवाल से प्रोग्राम सुन रही हैं जी, रुबाब है मेरे साथ चकबेली खान से सुन रही हैं, हेबा चौधरी है मेरे साथ हवेलियां से, जुनैरा है मेरे साथ हाफजाबाद से, और बूबी है मेरे साथ जी सरगोदा से प्रोग्राम सुन रही हैं। सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। कॉलर मेरे साथ है जी, हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप होगी जी, नेक्स्ट कॉलर को मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इनकी भी ड्रॉप होगी, नेक्स्ट को मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम
1: मिस्टर केबी, क्या हाल है?
0: मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहचाने पहले फिर बताऊंगा मैं।
0: आपकी तस्वीर थोड़ी धुंधली आ रही है।
1: अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर
0: जी। हाशमी साहब, बस अब मेरी आंखों
1: की है
0: जी,
1: तो जहाँ तक मैं समझा हूँ आपके टॉपिक पर, इंसान के बस में सिर्फ कोशिश है, इंसान है इल्ला मासा।
0: बिल्कुल,
1: इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, कोशिश करता है। तो इंसान को अपनी सारी डोरियां अल्लाह पर फेंक देनी चाहिए और उसी पर भरोसा करना चाहिए, और जिंदगी में कोई ना कोई आपको, आपके पास एक मकसद होना चाहिए, उसमें मसरूफ रहें, कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करेगा, वो किसी की मेहनत को जाया नहीं करता।
0: बेशक,
1: टॉपिक यही था ना आपका, मैंने जहां तक मैंने
0: ये उस मौजू का एक छोटा सा हिस्सा था।
1: हाँ हाँ, तो क्या वैसे क्या टॉपिक था आपका? मैंने कालों से अंदाजा लगाया है।
0: आज बड़ा वसी और अरीज टॉपिक था, आज बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, और बहुत सारी उन चीजों के ऊपर हाशमी साहब हमने रोशनी डालने की कोशिश की है कि जो शायद हमारे अंदर कहीं मौजूद होती हैं, लेकिन उनको आबियारी की जरूरत पड़ती है। कभी कुछ ऐसा लगता है कि हमें कोई कोई उसको आबियारी करे उसकी और बताए कि हाँ ये ऐसा है, हमें पता होता है सब कुछ, लेकिन हम उसको सुनना चाहते हैं, हम दोबारा से उसको, वो कहते हैं ना, रीवैम्प करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं। तो आज हमने रीसेट करने की कोशिश की।
1: ये आप कहना चाह रहे हैं कि इंसान में जो खूबियां छुपी होती हैं या उसमें कुछ उसके अंदर होता है, उसको आबियारी चाहिए।
0: जी जी, नहीं नहीं, खूबियों को आबियारी की बात नहीं कर रहा, आबियारी उसको चाहिए होती है कि जो हमारे अंदर हम जो हमारा ईमान है ना रब्बे कायनात पे।
1: जी जी जी,
0: हम बस हम सब जानते हैं उसकी खसूसियात को, उसकी अहमियत को, उसकी मौजूदगी को, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसको याद करने के लिए ना अब यारी चाहिए होती, किसी से सुनना पड़ता है कि यार हाँ रब मौजूद है, कहाँ मौजूद है, किधर है, उससे इन सारे सवालों का जवाब हमें कहीं चाहिए होता।
1: मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना।
0: वाह वाह कमाल कमाल।
1: टाइम छोड़ा है किसी और, अच्छा, को भी मौका।
0: अच्छा आशमी साहब इस बात पे एक बात कहता हूँ, जो अभी आपने कहा ना कि मैंने रब को पहचाना, तो आज का मौजू ये था कि रब अगर आपको अपनी पहचान दिलवाना शुरू करे ना, या आपको कभी दिलवाना चाहे, तो आपको किसी बेजान शय के अंदर भी अपना आप दिखा देता है। जानदार के अंदर तो दिखाता ही दिखाता है, कभी किसी बेजान शय के अंदर भी अपना आप दिखा देता है। आप एक दफा ना पहाड़ की तरफ देखें, ठीक है, एक पहाड़ अगर आपको दिखाई देता है, आपके अगर इलाके में पहाड़ है, खैर लाहौर में तो नहीं है, अब आप वहाँ पे
1: इलाके में अहमदाबाद में सारा गोबा हूँ वहाँ अहमदाबाद का कुल करीबी होगा
0: जी। अगर आपने लाहौर में दरियाए रावी को देखे लास्ट टाइम जो दरियाए रावी आया था, उसके अंदर रब ने अपना आप दिखाया था कि यस मैं हूँ, ये देखो मैं हूँ, मेरी कुदरत है।
1: जब ये अहमदाबाद का कुल करीबी होगा
0: जी, अगर आपने लाहौर में दरियाए रावी को देखे लास्ट टाइम जो दरिया रावी आया था, उसके अंदर रब ने अपना आप दिखाया था।

तीसरी बात ये की थी कि वो कहीं से भी आपको हिदायत अता कर देता है, वो कहीं से भी आपको अपना आप दिखा देता है, वो कहीं भी किसी जानदार में किसी बेजान में आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं से वो अपना आप आपको दिखा देता है। और जब वो अपनी तजल्ली आपको दिखाता है तो वो कहीं से भी दिखा सकता है। और जो चौथी बात मैंने की है वो ये की है कि आपके बसात में, आपकी औकात में, आपकी चाहत में, आपकी ना चाहत में, आपकी पसंद में ना पसंद में, शायद के वो उसके लिए लफ्ज़ ये है कि शायद के वो नहीं चाहता जो आप चाहते हैं, और आपकी पसंद ना पसंद, आपकी चाहत वहाँ पे रह जाती है अधूरी जहाँ वो चाहता है। और होना वही होता है जिसने अपनी कायनात के अंदर आपसे काम लेना होता है, जहां उसने आपको रखना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने बात की कि इन चार बातों के अंदर, ये जो पांच बातें मैंने की हैं इनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, वो आप खुद भी फैसला कर सकते हैं।

और बहुत सारे कॉलर्स ने भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए, और मैंने भी आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए। बस शुक्र बजा लाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए, किसी वजह को बेवजह नहीं समझना चाहिए। आज के प्रोग्राम में यही सब कुछ था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। और प्रोग्राम में अगर आप किसी ख़ास मौजू पे, किसी ख़ास बात पे बात करना चाहते हैं, बात करवाना चाहते हैं, हर जुम्मे को और हर पीर को मेरा प्रोग्राम होता है रात 12 से लेकर 2 बजे तक, मुझे आरजे के भी कहते हैं। तो आप अगर कोई मौजू बताना चाहते हैं, किसी मौजू के ऊपर खसूसन बात करना चाहते हैं, आपको आज का प्रोग्राम अगर पसंद आया, आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मौजू बता सकते हैं, आप मुझे बात बता सकते हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। बताने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ kb.baig। आप लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप कुछ भी बात है मुझसे कहना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो। प्रोग्राम में क्या बेहतरी आप चाहते हैं, प्रोग्राम में क्या चीज़ आप एलिमिनेट कराना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं kb.baig पे। मुझे दीजिए अगले जुम्मे तक इजाज़त। KB साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

FM 101. Hamisha Aapke Saath.

You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
2: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूँ नेक काम किया करूँ? हरगिज नहीं। ये एक ऐसी बात है कि वो उसे जबान से कह रहा होगा और उसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरज़ख है जहाँ वो उस दिन तक कि दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे।

और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने तई खसारे में डाला, हमेशा दोजख में रहेंगे। आग उनके मुंहों को झुलस देगी और वो उसमें तेवरी चढ़ाए होंगे।

हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो, अल्लाह को सब मालूम है।

وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا